माँ की इकलौती बेटी और अपने स्टेप डैड की पांचवी सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की।

वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि पिछली कहानी में हमने सुना था कि सुमन और विकास, यानी विकास किस तरह अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कड़ी मशक्कत करता है और कैसे कैसे पैसे जमा करके अपनी बीवी को होटल शालीमार लेके जाने की उसकी जो ख्वाहिश होती है वो पूरी करता है। अब दोनों जो होटल शालीमार पर आके पहुंच गए तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो सुनते हैं कहानी का अगला भाग। विकास और सुमन अब होटल के बाहर खड़े हैं, एक अलीशान होटल जो मुंबई में किसी JW मैरिट होटल से कम नहीं, ठीक उसी तरह। दोनों बाहर खड़े, दोनों के मन में न जाने कितने अनगिनत सवाल है, ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद उन्हें कोई ना दे सके, वो खुद भी नहीं जानते कि इन सवालों का जवाब ढूंढे कहां से। जो सोशल स्टिग्मा होता है वो उन पे आ गया था, जो सोशल टाबू हो जाता है कि गरीब लोग बड़े होटल में नहीं जा सकते। हाँ, जाने शायद बचपन में उन्होंने ये सुना हो तो इसीलिए वो जिस तरीके से धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहे थे उस होटल की ओर, उनके दिल में न जाने कितने कश्मकश, कितने सवाल, कितनी बेचैनियां उमड़ रही थी अंदर, एक सैलाब उमड़ रहा था कि वो सच में जाए या ना जाए। सुमन ने विकास का हाथ थामा और कहा कि क्या हमें अंदर जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? विकास ने जवाब दिया। वो क्या है ना कि आप तो जानते ही हैं कि हम कितने गरीब हैं और यहाँ पे आने वाले सारे अमीर, तो क्या हमारा जाना सही होगा? लोग हमें किस नजर से देखेंगे? आपको नहीं लगता कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमें वापस लौट जाना चाहिए घर? बड़ी धीमी आवाज से सुमन ने कहा यह। भला क्यों हमें लोग बुरी नजर से देखेंगे या ऊंच नीच वाली नजर से देखेंगे? हमारे पास पैसे है भाई, और हम थोड़ी किसी का फ्री में खाना खाने आए हैं ना, हम तो पैसे लेके आए हैं, और पैसे है तो खाना खाया जा सकता है। यहां भी क्या, लंदन में भी खाना खाया जा सकता है अगर पैसे है तुम्हारे पास। बड़ी मजाकिया तौर पर विकास ने सुमन से कहा, और यही कुछ चीजें थी, यही विकास का कहा हुआ था जो सुमन के अंदर उसने हौसला पैदा किया, और दोनों ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, वो जाएंगे अंदर। धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे कदम दोनों के बढ़ते रहे होटल की ओर, और जब होटल के दरबान के पास पहुंचे तो विकास ने अपनी जेब में से, ऊपर वाली जेब में से, शर्ट की जेब में से 50 रुपए निकालकर, जो शायद उसने पूरे दिन भर में कमाया था बूट पॉलिश करके, वो 50 रुपए जो उसने उसके ऊपर की जेब में रखे थे वो निकालकर रख दिया दरबान के हाथ में, ताकि दरबान उन दोनों को अंदर जाने से रोके नहीं। अब ये बात विकास को संदेश ने बताई थी कि अगर तुम कभी भी किसी बड़े होटल में जाते हो और शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पहनावे से या तुम्हारे रंग रूप से कोई तुम्हें बाहर निकाले, तो सबसे पहले एक चीज जरूर कर लेना कि किसी भी होटल के दरबान को कुछ पैसे उसके हाथ में रख दो, तो वो आपको कभी रोकेगा नहीं, वो आपको बड़ा आदमी समझेगा। और यही विकास ने किया, और दरबान के हाथ में 50 रुपए रख दिए, सुमन और विकास दोनों अब अंदर चले गए। अब दोनों अंदर चले गए, देख रहे हैं कि जाके कहां बैठे कहां बैठे कहां बैठे, समझ में नहीं आ रहा। कुछ टेबल खाली है लेकिन उनके ऊपर एक लंबा सा
कुछ रखा है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो उसी एक ऐसे बड़े से टेबल पर जिस पर कुछ लिखा हुआ है रिजर्व जैसा, वहां पर सुमन जाके बैठने की कोशिश करती है, उतने में पीछे से एक वेटर आता है, मैडम मैडम रुक जाइए, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ये ऑलरेडी किसी ने बुक किया हुआ है। तो सुमन एक मिनट के लिए शॉक हो जाती है कि ये क्या कह रहा है, किसी ने बुक किया, ये क्या होता है। तो वो वेटर उसे कहता है कि यहाँ पे कोई आने वाला है, उसने हमें पहले ही सूचना कर दी है कि वो यहाँ पे आएंगे और ये टेबल उनके लिए ही बुक है, आप एक काम कीजिए वो वहां पे देखिए टेबल खाली है, वो किसी के लिए बुक नहीं है, आप और सर वहां पर जाके बैठिए। अब जिंदगी में पहली बार किसी व्यक्ति ने विकास को और सर बोला था, तो विकास काफी खुश हुआ कि हाँ चलिए किसी ने तो हमें सर बोला। अब विकास और सुमन बैठे हैं दोनों उस टेबल पर इसी इंतजार में कि खाने में क्या मंगा है। अब वो जो बड़ा सा मेन्यू कार्ड उनके सामने रखा है वो तो उनको समझ नहीं आएगा कि इसमें से क्या मंगा है, क्योंकि उनको पढ़ना तो आता नहीं है और वो ठहरे देसी और बड़े सिंपल से बड़े भोले से लोग, तो उनको पता भी नहीं कि कैसे खाना मंगाया जाए यहाँ पे। तो वो विकास जो है एक वेटर को आवाज देता है भैया जी आइए, तो आजू बाजू वाले लोग उसे देखने लगते हैं। तो दूर दो टेबल छोड़कर खड़ा हुआ एक वेटर समझ जाता है कि ये नए नए आए हैं, इनको शायद से तौर तरीका नहीं पता या ये नहीं जानते कि वेटर कह के पुकारा जाता है। तो वो वेटर संदेश हाँ सॉरी तो वो वेटर विकास और सुमन के पास चला जाता है और कहता है कि बताइए आप खाने में क्या खाना चाहते हैं। विकास बड़े धीमी आवाज में उस वेटर से कहता है भैया जी हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, और ये जो बड़ा सा ये जो कार्ड रखा है आपने, हमें पढ़ना नहीं आता तो हम नहीं जानते इसमें क्या है, पर आप अगर हमारी कुछ मदद कर दे तो हमें क्या खाना है हम आपको बता देंगे, तो उस तरीके के पकवान का आपके पास कुछ हो तो जरूर ले आइएगा। तो वेटर हंसता है और कहता है कि हाँ हाँ बताइए सर आपको क्या चाहिए, मैं वो चीजें अगर हमारे पास होगी तो मैं जरूर लाने की कोशिश करूंगा। विकास कहता है बताओ सुमन जी क्या खाना है आपको। सुमन जी कहती है हमें वो पनीर की सब्जी खानी है, मटर पनीर पालक पनीर। तो विकास वेटर को अब ऑर्डर देने लगते हैं, एक काम कीजिए आप मटर पनीर होगा आपके पास। तो वेटर कहता है हाँ, तो मटर पनीर लाए। पालक पनीर होगा आपके पास? हाँ है, तो एक पालक पनीर और रोटी लाइएगा, रोटी आठ टू रोटी लाइएगा आठ, और दाल चावल मिल जाएगा आपके पास? हाँ मिल जाएगा, हाँ तो वो लाइए। और हाँ हाँ सुनिए, ये ऑर्डर सब लाने, ये सब खाना लाने से पहले वो जो कोल्ड ड्रिंक होती है शिकंजी वो दो लाइएगा, दो बड़ी वाली बॉटल में जो आती है, एक मैडम जी के लिए और एक हमारे लिए। और जब खाना पूरा खत्म हो जाएगा ना तो मैडम जी के लिए चार आइसक्रीम लाना, चार। तो वो वेटर जानने लग जाता है कि ये पहली बार आए हैं और बड़ा खुश होता है वो वेटर ये देखकर कि एक पति अपनी पत्नी के लिए किस तरीके से
کی ضد پوری کرنے کے لیے کس طریقے سے ہوٹل میں آ کر اس کے لیے طرح طرح کے ونجن کا آرڈر دے رہا ہے. اب 5-10 منٹ ہو جاتے ہیں اور کھانا آتا نہیں ہے. خیر کولڈ ڈرنکس تو آ جاتی ہے تو سمن جی کہتی ہے وکاس جی کچھ زیادہ ہی دیر نہیں ہو رہا ہے, ہمیں تو لگا تھا کہ ہم جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کھانا لاؤ اور یہ لے کے آ جائیں گے, پر اب تک 10-15 منٹ ہو گئے, اب تک تو کچھ نہیں آیا, یہ صرف شکنجی لا کے دیے, بس یہی پی کے جانا ہے ہمیں. تو اتنے میں وکاس اس ویٹر کو دوبارہ بلاتا اور کہتا ہے کہ بھیا جی ابھی تک کھانا نہیں آیا. تو ویٹر وکاس سے کہتا ہے کہ سر آپ کو شاید پتا نہیں ہے پر یہاں پہ جب بھی آپ آرڈر دیتے ہو تو لگ بھگ 25-30 منٹ لگ جاتے ہیں آپ کا کھانا آنے کے لیے, کیونکہ جب آپ آرڈر دیتے ہو تو پھر وہ آرڈر ہم لینے کے بعد وہ کھانا پکایا جاتا ہے پھر لایا جاتا ہے, تو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے, آپ کا کھانا ابھی ہم لا کے آپ کو پروستا ہے. تو 15 منٹ کے بعد ویٹر سارا آرڈر لاتا ہے, وکاس اور سمن کھانا کھانا شروع کرتے ہیں. روٹی کا ایک ایک نوالا جیسے مانو ایک ایک تارے وکاس نے توڑ کر لائے اور سمن کے ہاتھ میں دیے, جیسے کسی بھی پریمیکا کو پریمی ایک ایک تارا توڑ کر لا کے دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے, اور پریمیکا کتنی خوش ہوتی ہوگی وہ ایک ایک تارے کو دیکھ کر, ٹھیک اسی طرح روٹی کا ایک ایک نوالا سمن کو وہی یاد دلا رہا تھا کہ مانو وکاس نے آسمان سے نہ جانے کتنے تارے توڑ کر لائے ہیں اور آج اس کے قدموں میں بچھا دیے, آسمان کا پورا چاند اس کے قدموں میں بچھا دیا اس کی وہ ایک خواہش پوری کر کر. اب کھانا ختم ہو گیا, کھانا ختم ہونے کے بعد آئس کریم آئی, اب آئس کریم بھی ختم ہو گئی, اب آئس کریم ختم ہونے کے بعد دونوں نے چاہا کہ ہاتھ دھویا جائے ابھی, تو اتنے میں ویٹر نے گرم پانی سے بھرا ہوا باؤل ان کے سامنے لا کے رکھا اور ایک پلیٹ میں 8-9 pieces آف لیمنس لا کے رکھے. اب ان کو کیا لگا وہ لیمن اس باؤل میں نچوڑنا ہے اور پی لینا ہے, تو اس نے کہا کہ ویٹر سے وکاس نے کہ بھیا ہم نے تو یہ نیمبو پانی آرڈر نہیں کیا تھا, آپ نے کیوں لایا؟ تو ویٹر ہنسنے لگا بولا یہ نیمبو پانی نہیں ہے, یہ جو آپ کٹورا دیکھ رہے ہیں یہ گرم پانی کا کٹورا ہے, اس میں آپ اپنے ہاتھ دھوئیے, ہاتھ دھونے کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں ہے, اور آپ کے انگلیوں پر جو چپچپاپن ہے تو یہ آپ نیمبو اگر اس پہ مسلیں گے تو یہ چپچپاپن آپ کا چلے جائے گا, اور وہ ہاتھ میں دھوتے رہیے, ہاتھ دھوتے رہیے اس کٹورے میں. تو یہ پہلی بار ہو رہا تھا وکاس اور سمن کے ساتھ, تو یہ کافی ادبھت انوبھو تھا ان کے لیے اور وہ بہت زیادہ ایک دم ایک بچے کی طرح ایکسائٹیڈ تھے کہ دیکھو یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے, ہم کو کہیں جانا نہیں ہے اور ہمارے ہاتھ دھونے کے لیے یہاں پہ کٹورا بھی لایا جا رہا ہے جس میں ہم ہاتھ دھو رہے ہیں, نیمبو لگا رہے ہیں, یہ بہت ایک الگ انوبھو تھا ان کے لیے. تو اب ہاتھ دھو لیا, کھانا کھا لیا, آئس کریم کھا لیا, اور اس کے بعد باری آئی بل دینے کی. تو بل دینے کے لیے وکاس نے کہا ویٹر سے کہ ہمیں بتا دیجئے کتنا پیسہ ہوا ہے تو ہم دے دیں اور جائیں یہاں سے. تو ویٹر چلے جاتا ہے اور بل لے کے آتا ہے, اور بل لے کے آتا ہے تو لگ بھگ 1800 روپے بل ہوا ہوتا ہے, اور وکاس کے پاس تو 2250 روپے ہیں, تو وہ تو خوش ہو جاتا ہے کہ چلو 450 روپے میرے پاس بچ ہی گیا. اب وہ بل لکھتا ہے اور اپنی جیب میں سیدھے سائیڈ والے پینٹ کی جیب میں جب وہ ہاتھ ڈالتا ہے پیسے نکالنے کے لیے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو ہاتھ ہے وہ پورا آر پار چلا گیا, یعنی جو پینٹ وکاس نے پہنی ہے وہ پھٹی ہوئی ہے. اب وکاس بہت زیادہ چنتت ہو جاتا ہے,
वो अपने दूसरे जेब में हाथ डालता है, वहां पे उसे पैसे नहीं मिलते। वो पैंट के पीछे वाले जेब में हाथ डालता है, वहां उसे पैसे नहीं मिलते। वो धीरे से सुमन से कहता है कि सुमन जी, हमने आपको पैसे दिए क्या रखने? सुमन जी कहती है, नहीं, आपने हमें तो पैसे नहीं दिए, आपने आपके पैंट के जेब में रखे थे ना निकलते समय। तो बीवी को कोई चिंता ना हो इस कारण विकास जोर से हंसता है, हाँ हाँ मेरे ही जेब में, मैं तो देख रहा था कि कहीं तुम परेशान तो नहीं होती अगर मैं ऐसे कहूं तो। और अंदर विकास बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि तुम 2 मिनट रुको, हम आ रहे। ये कहकर विकास बाहर जाता है और देखता है कहीं वो पैसे रिक्शा से उतरते समय उसने गिराए तो नहीं या वहां गिर तो नहीं गए। तो वहां पे जाके पूरा देख के आता है, पर उसे वो पैसे मिलते नहीं है। वो जहां जहां से चल के आया ठीक उसी तरीके से वहां पे फिर से दोबारा चलकर जाता है, देखता है कि पैसे उसे मिल जाए, पर वो पैसे उसे मिलते नहीं है। और वो परेशान होकर 10 मिनट बाद जब फिर से दोबारा होटल में आता है तो वेटर भैया को दोबारा आवाज लगाता है कि हमारे पास पैसे थे पर हम नहीं जानते कि ये बिल भरने के लिए जो हम आपको पैसे देने वाले थे ये कहाँ गिर गए। हम घर से लेके निकले थे पैसे, पैसे हमारे पास मौजूद थे, पर जब हमने ये आपको पैसे भरने के लिए जेब में हाथ डाला तो हमारी पतलून की जेब फटी निकली। विकास वेटर से कहता है, वेटर कहता है कि देखो हम जानते हैं ये तुम्हारे हथकंडे हैं, पहले तो एकदम अच्छा अच्छा खाना खा लो और बाद में बोल दो पैसे नहीं है और कहीं से यहां से बच के निकल जाओ। हम ठीक से जानते हैं तुम गरीबों की ये सारी हरकतें, तो चुपचाप से अपना बिल भरो और जाओ यहां से, निकलो यहां से। वेटर कहता, नहीं नहीं वेटर भैया, सच में हमारे पास पैसे थे, 2250 रुपए थे, हमने मेहनत से कमाए थे, हमने दो दो जगह काम करके ये पैसे कमाए थे, हमारी सुमन के लिए कमाए थे, ये पैसे थे हमारे पास, हम झूठ नहीं कह रहे। हम घर से लेके निकले थे तो पैसा लेकर निकले थे, हमने अपनी जेब में ही रखा था ये पैसा, पर हम नहीं जानते थे कि पतलून हमारी फटी हुई है, पैसे कहीं गिर गए हैं। आप हमारी बात का भरोसा कीजिए, हम आपके पैसे चुका देंगे, फिर से दोबारा मेहनत करेंगे, लेकिन आप हमारी बातों को समझिए, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमें माफ कीजिए, हमें जाने दीजिए। विकास गिड़गिड़ाकर रोकर विनती करता है उस वेटर से कि वो उसकी बात मान जाए और किसी तरीके से सुमन और विकास को घर जाने के लिए दे दे। वेटर नहीं मानता, वेटर कहता है नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, तुम्हें अब यहां पे काम करना पड़ेगा, यहां नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें अब यहां बर्तन मानने पड़ेंगे, खाना खाते समय तुम्हें नहीं सूझा कि पैसा नहीं है तुम्हारे पास, अब ये सब तुम्हें सूझेगा जब तुम बर्तन मांजोगे, जब 15 दिन बर्तन मांजोगे तब जाके ये जो तुम्हारा बिल हुआ ये पूरा होगा। तो चलो उठो उठो उठो, चलो बर्तन मांजने चलो। ये कहकर वेटर विकास को अभी चेयर पर से उठाने लगता है। ये सारा मांजरा देखकर सुमन बहुत रोने लगती है और वो खुद को दोष देने लगती है कि ये उसी की ख्वाहिश थी जो आज उसके पति की बेइज्जती हो रही है। अगर वो अपनी ख्वाहिश नहीं बताती तो शायद ये दिन कभी आता नहीं और विकास कभी उसे वहां लेकर नहीं जाता, ये सब मामला नहीं होता और विकास की इतनी बेइज्जती नहीं होती। सुमन इसी चक्कर में रोने लग जाती है और अपने आप को कोसने लग जाती है। उतने में विकास उससे कहता है कि सुमन जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अब शांत रहिए, कुछ नहीं होगा, आप घर जाइए, हम काम करके आ रहे हैं, ये है ना इसके पहले भी काम कर लेंगे थोड़ा और काम, और आपके लिए ही तो कर सकते हैं ना काम, आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप हमारी अर्धांगिनी हो, धर्मपत्नी हो,
अगर आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? तो आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम बस ये काम खत्म करके आ ही रहे घर, आप जाइए। ये कहकर विकास सुमन को होटल के बाहर जाने पर मजबूर तो कर देता है, पर सुमन जाती नहीं है, वो होटल के बाहर ही विकास का इंतजार करती है। विकास अपने मायूस चेहरे को लेकर उस वेटर के साथ धीरे धीरे धीरे धीरे किचन की ओर कदम बढ़ाता है, जहां पे पूरा बर्तन धोने का एक अलग सा डिपार्टमेंट है। वहां जाता है, देखता है तो न जाने सैकड़ों थालियां पड़ी हुई, बड़े बड़े पतीले पड़े हुए, न जाने कितना सामान जो धोने के लिए पड़ा हुआ है। और वो जो वेटर होता है वो कहता है कि आज तुम्हें इतना पूरा बर्तन धोना है और रोज आके यही काम करना है आने वाले 15 दिनों तक, तब जाके तुम्हारा बिल पूरा होगा। विकास गरीब क्यों ना हो पर एक खुददार आदमी था। वो जानता था कि अगर उसने खाना खाया है और अभी उसके पास पैसे नहीं है बिल चुकाने के लिए तो वो ये काम जरूर करेगा। तो विकास अपना शर्ट उतारता, अपनी पैंट उतारता और एक लंबा सा रखा हुआ कपड़ा पहनता है ताकि उसके जो शादी के कपड़े सफारी वो गंदा ना हो, और वो कपड़ा लपेट कर एक लुंगी जो रखी हुई होती है वहां पर वो लपेट लेता है और सोचता है वही लपेट कर वो काम करेगा। अब वो लुंगी लपेट लेता है और बड़ा सा पतीला को खींचते हुए अपने पास लेके आता है, ब्रश उठाता है, उस पर थोड़ी सी टिकिया लगाता है और पतीले में जैसे हाथ मांझने जाता है, वो पतीले को मांझने जाता है, उसकी नजर उठती है, जाती है अपने पैंट पर, और पैंट की जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहां पे तुरपाई की होती है पैंट को, वो हिस्सा फटा हुआ होता है, लगभग 2 से 3 इंच, और उस फटे हुए हिस्से में वो पैसे जाकर अटक जाता है जो विकास ने अपने सीधे साइड के पतलून में जो फटी हुई जेब है वहां पे जब वो डालता है तो वो पैसे कहीं गिरते नहीं है, उसी की ही पतलून के जो नीचे वाले हिस्से में जाके अटक जाता है। और तब विकास को याद आता है कि ये जो शरारत है ये और किसी की नहीं, उस अलमारी में घूमते फिरते हुए उसके घर में टहलते हुए चूहों की है। ये चूहे ही थे जिन्होंने उसका जेब कतर दिया, और ये चूहे ही थे जिन्होंने वो तुरपाई को काट दिया था, और उस तुरपाई में वो पैसे जा अटके थे। तो विकास जब वो पैसे देखता है तो इतना ज्यादा खुश होता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, जैसे मानो उसने आसमान पा लिया हो, जैसे मानो उसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, जैसे मानो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। इतना जोर से चीखता है और जाकर सीधे वो पैसे लेता है। वो पैसे अब वो पैंट में नहीं डालकर अपनी शेरवानी के ऊपर वाले हिस्से में रखता है, शेरवानी पहनता और आता है वेटर के पास और उससे कहता है, भैया जी हम आपसे कह रहे थे ना कि पैसे थे हमारे पास और पैसे है हमारे पास, ये देखिए ये पैसे जो है हमारे तुरपाई में अटके हुए थे पैंट के नीचे वाले हिस्से में, शायद वो चूहों ने कतर दिया था, और हमारी जेब भी, हम झूठ नहीं कह रहे थे आपसे, अभी ये आपका पैसा लीजिए खाने का और हमें जाने दीजिए, हमारी सुमन हमारा बाहर इंतजार कर रही है, तो जाने कितनी रो रही होगी वो। और ठीक इसी तरह विकास वो बिल पे करके जब बाहर आता है तो सुमन रोती हुई उस होटल के बाहर जो एक छोटा सा मंदिर है वहां पे रोती हुई ये प्रार्थना में लगी हुई है कि बस जल्द से जल्द उसका पति विकास बाहर आ जाए। और विकास जब बाहर आता है तो विकास उससे वो पूरा वाकया बयान करता है कि कैसे कैसे उससे वो पैसे फिर मिले, और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, और बचे हुए 450 रुपये जो होते हैं उसके पास वो पैसे विकास सुमन के हाथों में देता है और कहता है कि लक्ष्मी को लक्ष्मी के पास ही होना चाहिए,
मेरे पास आप वही काफी है, आप ये लक्ष्मी को अपने पास ही रखें। और दोनों खुश होकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानियां हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी सीख देती है कि जो शायद हमने कभी सोची भी ना हो। जैसे कि हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, और हम बस यही कोशिश में रहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी खत्म हो जाए। और अचानक से एक ऐसा रास्ता खुलता है कि शायद हमने जिसकी कभी उम्मीद नहीं की होती, और वहां से हमारी उस परेशानी का हल आता है। वो कहते हैं ना, जब भगवान एक दरवाजे बंद करता है तो 10 दरवाजे खुलता है। ठीक उसी तरीके से हुआ विकास और सुमन की कहानी में, जहां उन्हें लगा कि सारे दरवाजे बंद है, अब कोई ये परेशानी खत्म ही नहीं होगी, ये परेशानी टल ही नहीं सकती, ये परेशानी का कोई हल ही नहीं है। और अचानक से एक ऐसा हल आया इस कहानी में कि जिसकी किसी ने कभी कल्पना ही नहीं की होगी, जिसकी कल्पना ना शायद सुमन ने की, ना विकास ने की, ना वेटर ने की, ना किसी ने की। पर भगवान जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, आपकी नियति, आपके अच्छे काम, आपकी मेहनत आपको उस मुकाम पर ला खड़ा करती है कि आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो एक पल में हल हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये कहानी को सुनने के लिए। मैं फिर से लौटूंगा दोबारा एक नई कहानी लेकर। तब तक आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल में घर कर जाए।

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
1: भाई बहुत खूब गोई बाबू, बड़ा शुक्र नवाज है घर आपका। नौकर चाकर भी शायरी करते हैं।
2: मियां, शायरी सिर्फ दौलतमंदों की जागीर नहीं। तुम कुछ कह रहे थे बरखुर्दा, चुप क्यों हो गए? कहो कहो।

0: तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नज़म क्यों सुनाई? मेरे सोए हुए जज्बात फिर से जाओ,
1: पिछली बातें भूल जाओ। मीना
0: फुला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया था मैंने, इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में?
2: मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या ही कब था, तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती न करो मीना।
0: मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने
2: मिस्टर घोष से ब्याह किया, यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया।
0: गलत इल्जाम ना दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया, लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे, जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं, प्यार ही नहीं, भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम?
2: उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दोगी ना? तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, सामाजिक नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रही, जानती हो क्यों? तुमने हमेशा अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते हुए तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं, और आज तुम अपने पति की खुशी छीनना चाहती? मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रखते

अपनी माँ की इकलौती बेटी और अपने स्टेप डैड की पांचवी सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की। The girl's got everything. The girl's got everything.

हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे हैं कहानियों की गुल्लक, एक ऐसी गुल्लक जिसमें हम लेके आते हैं नई नई कहानियाँ और उस गुल्लक को भरते हैं कहानियों से। जैसे कि पिछली बार आपने सुना था अमन और विक्रम किस तरीके से जेल में हैं। एक दोस्त है पुलिस अफसर और दूसरा दोस्त है एक कैदी। कैदी के दिल में ये डर है कि कहीं उसे अब अंग्रेजी हुकूमत ख़त्म ना कर दे, और वही दोस्त जो पुलिस अफसर है उसके दिलो दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है कि वो अपने दोस्त को भी बचा ले और वहाँ से क्रांतिकारियों की फाइल भी चुरा ले। तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा। 1931 की सर्द रात, जेल के अंदर हवा भी अजीब सी लगी थी। दीवारें मोटी थी, लोहे के दरवाजे भारी आवाज के साथ बंद होते थे और हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा बसा हुआ था। इसी जेल के अंदर कमरे में बैठा था विक्रम सिंह। उसके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे, चेहरे पर थकान थी, कपड़ों पर खून के छोटे छोटे दाग थे। अंग्रेज सिपाहियों ने उसे पकड़ने के बाद से ही पूछताछ शुरू कर दी थी। आजाद सेना मंडल के लीडर कौन है, फाइल्स कहां छुपा रखी है, कौन कौन शामिल है तुम्हारे ग्रुप में, ना जाने ऐसे कितने अनगिनत सवाल अंग्रेजी हुकूमत पूछने लगी। अंग्रेजी सिपाही मारने लगे पर विक्रम टस का मस नहीं हुआ। विक्रम के दिल में, विक्रम के दिमाग में, उसके पूरे बदन में, उसके पूरे शरीर में, उसके बदन के खून में, हर दौड़ती हुए खून में, हर नसों में, रग रग में बस एक ही चीज थी, आजादी, आजादी, आजादी। इसीलिए इतनी मार, इतनी चोटें, इतनी वेदनाएं सहने के बाद भी विक्रम ने जवाब नहीं दिया, बस चुप रहा। कभी कभी वो मुस्कुराता भी था और उस मुस्कुराहट से अंग्रेज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। एक सिपाही ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा, बोल वरना जिंदा नहीं बचेगा। विक्रम धीरे से बोला, आजादी के लिए मरना कोई सजा नहीं होती। सिपाही गुस्से से लाल हो गया, उसने डंडा उठाया और फिर से विक्रम पर बरसा दिया। कमरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, डंडे की। कैप्टन हॉकिंस का सवाल, अगली सुबह में जेल में एक गाड़ी रुकी, उस गाड़ी से उतरकर सीधा जेल के अंदर आया एक आदमी, लंबा कद, सफेद यूनिफॉर्म और आंखों में वही ठंडी सख्ती, कैप्टन एडवर्ड हॉकिंस, जेल सुपरिटेंडेंट, उसके सामने सीधा खड़ा हो गया। सर, ये वही लड़का है, क्रांतिकारी। हॉकिंस धीरे से विक्रम के पास आया, उसने उसका चेहरा पकड़ा और ऊपर उठाया। तुम जैसे जवान अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हो, हॉकिंस ने उससे कहा। विक्रम ने थूक दिया जमीन पर। जिंदगी बर्बाद नहीं, कुर्बान करते हैं, विक्रम ने बड़े फक्र से कहा। हॉकिंस थोड़ा हंस पड़ा। तुम लोगों को लगता है तुम अंग्रेजी हुकूमत गिरा दोगे? विक्रम ने सीधा जवाब दिया, एक दिन जरूर। हॉकिंस कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने गार्ड को इशारा किया, इसे तोड़ दो, कल तक बोलना शुरू कर देगा। उसी वक्त जेल के कॉरिडोर में एक और ऑफिसर खड़ा था, यूनिफॉर्म पहने हुए, टोपी आंखों पर थोड़ी झुकी हुई, सब इंस्पेक्टर अमन खान। वो सब कुछ देख रहा था मगर उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक सिपाही ने पूछा, सर आप अंदर आना चाहेंगे? अमन ने बस इतना कहा, ड्यूटी कंप्लीट होने दो,
मगर जब हॉकिंस वहां से चला गया तब अमन धीरे से सेल के पास आया। गार्ड कुछ दूर खड़ा था। अमन ने धीरे से कहा, विक्रम। विक्रम ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी थी, फिर वो थोड़ा हंस पड़ा। तो सच है? अमन चुप रहा। तुम उनके आदमी बन गए? अमन धीरे से बोला, ये सब नाटक है। विक्रम ने सर हिला दिया। नाटक? नाटक भी कभी कभी सच बन जाता है अमन। विक्रम, अमन की आंखों में पहली बार दर्द दिखा। मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। विक्रम थोड़ा हंसकर कहने लगा, अभी भी प्लान बना रहे हो? अमन ने कहा, मैं फाइल्स के करीब हूं, हॉकिंस के भी। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, अगर तुम सच में उनके साथ हो तो आज ही मुझे गोली मार दो। अमन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, विक्रम मैं तुम्हें बचाने आया हूं। क्या तुम्हें मेरे अंदर अब तुम्हारा बचपन का दोस्त नजर नहीं आता? वो दोस्त जिसने तुम्हारे साथ मिलकर आजादी की कसमें खाई थी, वो दोस्त जिसने तुम्हारे साथ मिलकर आजादी का सपना देखा था, वो दोस्त जिनकी लोग मिसाल देते थे, वो दोस्त जिसके लिए तुम ही सब कुछ हो। अमन के इतना सब कुछ कहने के बावजूद विक्रम की आंखों में शक बस चुका था। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो अमन पर भरोसा करे या ना करे। उसके दिल में एक अलग सी कश्मकश चल रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कि शायद अमन ही उसे गोली मार दे या अमन ही उसे खत्म कर दे। उसे ये भी लग रहा था कि अमन वो फाइल्स जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगा या अमन उनके सीक्रेट मिशंस को लेकर, क्रांतिकारियों के छुपने के ठिकानों से लेकर क्रांतिकारियों के नाम, उनका घर, वो सब कुछ जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को दे देगा। दोनों के दिल में न जाने कितने अनगिनत सवाल थे और वो दोनों के पास उन दोनों सवाल के कोई जवाब नहीं था। बस अमन ये सोच रहा था कि कैसे वो विक्रम को बचा ले और फाइल्स को वहां से चुरा ले। वही दूसरी ओर विक्रम के दिल में भी रुक रुक कर बस एक ही आस उठ रही थी और वो ये थी कि अमन गद्दार ना निकले, बस अमन जैसे पहले था, क्रांतिकारी, आजादी के लिए लड़ने वाला, वो आखिर में भी बस ऐसे ही निकल आए, क्रांति की तरह, एक क्रांतिकारी की तरह। तो कहानी का अगला भाग सुनेंगे हम अगले हिस्से में। तब तक आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद। आप सुनते हैं कहानी का आखिरी हिस्सा और इस हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे विक्रम जेल में है और कैसे अमन फाइल्स को चुरा लेता है या नहीं लेता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे अभी। उस रात लखनऊ ब्रिटिश ऑफिस में एक मीटिंग हुई। हॉकिंस टेबल के हेड पर बैठा था। उसने एक फाइल टेबल पर पटकी। क्रांतिकारी बढ़ रहे हैं, अब वक्त आ गया है सख्ती का, हॉकिंस ने कहा। एक ऑफिसर ने पूछा, सर क्या ऑर्डर है? हॉकिंस ने तेज आवाज में कहा, सिक्योरिटी सप्रेशन पॉलिसी, जो भी क्रांतिकारी पकड़ा जाए उसे सीधे मार दो। रूम में कुछ पल की खामोशी छा गई। अमन भी उसी मीटिंग का हिस्सा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, सर ट्रायल? हॉकिंस हंस पड़ा, जस्टिस इज अ लग्जरी इन वॉर। कल सुबह उस लड़के विक्रम सिंह को एग्जाम्पल बना देते हैं, हॉकिंस ने कहा। अमन काफी शांत हो गया इसमें। रात के अंधेरे में अमन जेल के अंदर गया। गार्ड को उसने कहा, कैप्टन का ऑर्डर है प्रिजनर्स को शिफ्ट करना। गार्ड ने दरवाजा खोला। सेल के अंदर विक्रम बैठा था। अमन उसके पास आया। आज रात भागना होगा, अमन ने कहा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें लगता है मैं तुम पे भरोसा करूंगा?

फिर उसने धीरे से कहा, तो मरने दो। अमन की आवाज तोड़ गई, पागल हो क्या? विक्रम ने सीधा जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो लोग कहेंगे विक्रम सिंह डर गया, मगर अगर मर गया तो लोग कहेंगे एक और क्रांतिकारी शहीद हो गया। अमन कुछ बोल नहीं पाया। उस रात दोनों दोस्त चुप बैठे रहे, जैसे बचपन के वो दिन याद कर रहे हैं। वही बरगद का पेड़, गांव की गलियां और आजादी के सपने, और यही सारी बातें सोचते हुए, इनके सपने देखते हुए सुबह का सूरज निकल आया। अगली सुबह जेल के कोर्टयार्ड में लाइन लग गई। ब्रिटिश सोल्जर्स खड़े थे, बीच में खड़ा था विक्रम सिंह। उसके हाथ अब बंधे नहीं थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। हॉकिंस सामने खड़ा था, उसने पूछा, लास्ट वर्ड्स? विक्रम ने आसमान की तरफ देखा, फिर जोर से चिल्लाया, आजादी। फिर उसकी नजर अमन पर पड़ी। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। विक्रम ने बस इतना कहा, अपना ध्यान रखना दोस्त। अमन की उंगलियां कांप रही थी, मगर वो कुछ नहीं कर पाया। हॉकिंस ने हाथ उठाया, फायर! गोलियों की आवाज कोर्टयार्ड में गूंजने लगी, और उस पल एक दोस्त

गोली चलाने के बाद सब लोग वहां से चले गए। कोर्टयार्ड खाली हो गया, बस एक आदमी वहां खड़ा था, अमन खान। वो धीरे से विक्रम के पास आया, जमीन पर बैठा। उसने उसके खून से भीगे हाथ को पकड़ा और धीरे से कहा, तुमने कहा था ना बदला नहीं आजादी। अमन की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज अब बिल्कुल ठंडी हो

आजादी। और उस पल ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहने हुआ एक आदमी अंदर ही अंदर क्रांति बन चुका था। एक ऐसी क्रांति जो पूरी ब्रिटिश आर्मी को जलाने वाली थी, ब्रिटिश सोल्जर्स को जलाने वाली थी, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को जलाने वाली थी। कुछ दिन बीत गए, महीने बीत गए, एक साल बीत गए और अब लोग एक नाम लेने लगे थे, सब इंस्पेक्टर अमन खान। ब्रिटिश ऑफिसर्स उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत इफिशिएंट था, क्रांतिकारियों को पकड़ने में सबसे आगे। कई सीक्रेट हाइडआउट्स उसने रेड करवाए, कई लोगों को जेल भेजा। ब्रिटिश ऑफिसर्स कहते थे ये आदमी लॉयल है, मगर सच कुछ और था। एक दिन रात के अंधेरे में अमन एक पुरानी हवेली में गया। अंदर कुछ लोग बैठे थे, आजाद सेना मंडल के बचे हुए मेंबर्स। उनका लीडर अब एक नया आदमी था, इकबाल हुसैन। इकबाल ने अमन को देखा, उसकी आंखों में शक था। हम तुम पर भरोसा क्यों करें, इकबाल ने कहा। अमन ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि विक्रम सिंह मेरा दोस्त था। रूम में खामोशी छा गई। अमन ने टेबल पर एक फाइल रखी, ये हॉकिंस की सिक्योरिटी डिटेल्स है। सब लोग हैरान हो गए, तुम ये सब कैसे ले आए? अमन ने बस इतना कहा, मैं उस आदमी को मारना चाहता हूं। फाइल में सब कुछ था, हॉकिंस का रूटीन, गार्ड शिफ्ट टाइमिंग्स और एक इम्पोर्टेंट बात, हर फ्राइडे रात वो लखनऊ रेसिडेंसी क्लब जाता है शराब पी पार्टी कर। अमन ने मैप खोला, यही मौका है और इसी जगह हमें उसे मारना होगा। इकबाल ने पूछा, तुम गोली चलाओगे? अमन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं उसे खुद खत्म करूंगा। अगली शाम हॉकिंस और अमन एक जीप में जा रहे हैं। हॉकिंस ने सिगरेट जलाई और कहा, तुम बहुत काम के ऑफिसर हो अमन। अमन चुप रहा। हॉकिंस ने हंसकर कहा, तुम जैसे लोग ही ब्रिटिश राज को स्ट्रांग बनाते हैं। अमन ने धीरे से पूछा, सर आपको कभी लगता है कि लोग आज़ादी चाहते हैं? हॉकिंस हंस पड़ा, पीपल ऑलवेज वॉन्ट समथिंग, मगर पावर उनके पास होती है जो रूल करते हैं। अमन ने उसकी तरफ देखा और उस पल उसे विक्रम का खून याद आ गया। फ्राइडे रात रेसिडेंसी क्लब रोशनी से जगमग कर रहा था। अंग्रेज ऑफिसर्स म्यूजिक और शराब में डूबे हुए थे। हॉकिंस एक कॉर्नर टेबल पर बैठा हुआ था, अमन उसके पास खड़ा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, मगर बाहर अंधेरे में आजाद सेना मंडल के लोग तैयार थे। प्लान सिंपल था, 10:30 बजे लाइट चली जाएगी और उस पर कैप्टन हॉकिंस मरेगा। मगर अमन के दिमाग में एक और प्लान चल रहा था, एक ऐसा प्लान जिसे सिर्फ हॉकिंस नहीं पूरी ब्रिटिश पॉलिसी को एक मैसेज मिलने वाला था। और उस रात लखनऊ के क्लब में अंधेरे में एक गोली चलने वाली थी, जो सिर्फ एक आदमी को नहीं एक दोस्ती का बदला भी पूरा करने वाली थी। एक आदमी की नहीं बल्कि एक दोस्ती की, एक आज़ादी की मिसाल बनाने वाली थी। तो ठीक 10:30 बजे लाइट चली गई, अमन ने अपनी पिस्तौल निकाली। वो पिस्तौल उसने हॉकिंस के सर पर रखी और एक के बाद एक ऐसे 3 गोलियां उसके सर में दागी और वहां से आजादी आजादी आजादी चिल्लाते हुए अमन बाहर भाग आया।
इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त का बदला पूरा किया। जो लोग अमन को गद्दार समझते थे, उसने वो अपने गद्दारी का कलंक मिटाया, जो कि वो कभी गद्दार नहीं था, पर उसकी मंशा साफ थी कि वो छुपके से ही, एक सीक्रेटिव तरीके से ही क्रांतिकारी बन के रहेगा। मगर अब वो एक खुला क्रांतिकारी था। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दो दोस्त और एक बदला, ये कहानी सुनने के लिए। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी सारी कहानी अच्छी लगती होगी। तो सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अगली बार फिर से लौटूंगा एक अलग कहानी लेकर, जिसमें होंगे बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी बातें और कुछ छोटी मोटी नोकझोंक। तब तक के लिए बाय बाय।

ऊंची उड़ानों के लिए आचार्य 90 FM के ऑडियंस से मिलने का किया था वादा, आपसे दोस्ती निभाने का भारतीय सीमा का इरादा। स्वाद का जायका इस शो के ऑडियंस को आरजे भारतीय सीमा का प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। काई हाल है थारा भाई, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। अब का बताएं भाभी, गर्मी ने तो सबकी हालत ही बेकार कर दी है। हमें तो बड़ी दिक्कत सी हो रही है, पर का करें, हमारे प्यारे ऑडियंस से दोस्ती निभाने हमें आना ही पड़ता है। वैसे अच्छा गाना और टेस्टी खाना यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अब रोज रोज क्या बनाए ये तो बड़ी मुश्किल है, राइट? इस सवाल का तो जवाब किसी के पास नहीं होता, तो क्यों ना आज हम आचार्य 90 FM के ऑडियंस के लिए कुछ जुगाड़ रेसिपीज बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि गर्मियों में सिंपल और होममेड खाना खाने से हमें दिन भर फ्रेश फील होता है। तो तैयार हो जाइए हमारी फर्स्ट रेसिपी सुनने के लिए, जिसका नाम है गुलाबी दही। गुलाबी दही, इस नाम को सुनकर आपको हो रही एक्साइटमेंट को मैं हमारे स्टूडियो में भी फील कर सकती हूँ। वैसे देखा जाए तो ये रेसिपी, गुलाबी दही को आप एज अ योगर्ट यूज कर सकते हैं। जब गर्मी ज्यादा बढ़े और कुछ खाने का मन ना हो, तब आप ये जुगाड़ रेसिपी बना ही लीजिए। हम सब जानते ही है कि सुबह के टाइम दही खाना हेल्दी होता है, क्योंकि दही से पेट शांत रहता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण मीन्स हमारे नटखट कान्हा, उनको भी दही, दूध और मक्खन खाना बेहद पसंद है। वैसे आपकी ब्यूटी रेजिम में आप दही खाना ऐड करें तो आपके बालों और स्किन को पोषण मिलेगा। तो चलिए हम और आप मिलकर खेलते हैं, कौन बनाएगा पिंक दही। हमारी पहली रेसिपी है पिंक दही। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फ्रेश दही 2 बड़ी कटोरी, कद्दूकस किया हुआ गाजर 4 चम्मच, ग्रेटेड कैरेट्स, ग्रेटेड बीटरूट 4 चम्मच, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इसमें उतरने वाली हैं। शक्कर 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार, वैसे यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए थोड़ी सी कोतमीर, अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच। वैसे हमारे नन्हे ऑडियंस इस पिंक कर्ड को एकदम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये नॉन फायर रेसिपी है और मजे से एंजॉय भी कर सकते हैं। पिंक दही को बनाने के लिए एक बर्तन में फ्रेश दही लीजिए, उसमें शक्कर नमक को अच्छे से मिक्स कीजिए, इसमें ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। फिर उस दही में ग्रेटेड बीटरूट और गाजर को ऐड कीजिए। 1 चम्मच की मदद से गाजर और बीटरूट को उस दही में मिक्स कीजिए। अब जैसे ही आप मिक्स करना शुरू करेंगे, उसमें सुंदर सा पिंक कलर देखना शुरू हो जाएगा। अब इसमें बारीक कटी हुई कोथमीर डालकर डेकोरेशन कीजिए। हो गया। आप चाहे तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। अब इस पिंक कर्ड को एक सुंदर सी कांच की कटोरी में सर्व कीजिए। अगर आपके पास मिट्टी की कटोरी है तो उसमें भी ये पिंक दही आप सर्व कर सकते हैं, इससे उसका लुक और ज्यादा अच्छा होगा। आप सिंपल दाल चावल, खिचड़ी, रोटी या सब्जी के साथ भी इस पिंक दही का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे बिरयानी पुलाव के साथ ये पिंक कर्ड अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। कुछ नहीं तो सिंपल रोटी का रोल बनाकर आप इस पिंक दही के साथ खाकर देखिए जनाब। ऐसा इंस्टेंट जुगाड़ आपको और आपके अपनों को हेल्थ बेनिफिट्स ही देगा। इस पिंक दही को देखकर आप एकदम खुश हो जाएंगे। थाली पीठ या फिर पराठे के साथ इस पिंक दही की जोड़ी तो एकदम सुपर हिट साबित होगी। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। आज के इस शो में हम इसी टाइप की कुछ और जुगाड़ रेसिपीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पेश है इस पिंक दही की खिदमत में छोटी सी कविता। कविता का नाम है गुलाबी दही। जनाब एक बार बनाकर देखिए आप ये गुलाबी दही, पहला निवाला खाकर जरूर कहेंगे वाव, एकदम सही कॉम्बिनेशन, अनोखा सा बीटरूट, गाजर और दही, हेल्दी खाना है ये, सोचने की जरूरत ही नहीं। दही खाने से पेट एकदम फिट,
गाजर और बीटरूट की जोड़ी बन गई सुपर हिट। अच्छा खाना खाकर पहले बनाओ सेहत, फिर जरूर रंग लाएगी आपकी कड़ी मेहनत। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। वैसे मेकअप करना सारी लेडीज को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में मेकअप को संभालना मुश्किल होता है। हमारी आज की रेसिपी मींस पिंक दही को खाने से आपकी स्किन पर एक ग्लो आएगा, मींस 24/7 मेकअप है कि नहीं। वैसे सुंदरता सच्चाई की मुस्कान है जब वो परफेक्ट आईने में अपना रंग दिखाए, और सच्चाई यही है कि हम आचार्य 90 FM के ऑडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, और दोस्तों का ख्याल रखना मतलब दोस्ती निभाना है जो हम कर रहे हैं। वैसे आपके हाथों से बनी वो कौन सी रेसिपी है जो आपके दोस्त को ज्यादा पसंद है? भाई मुझे तो मेरे दोस्तों के घर पे बनने वाला ट्रेडिशनल खाना बहुत पसंद है। अब चलिए आज हम बात करेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री की फेमस सिंगर आशाताई भोसले की। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि गाने के अलावा अपने हाथों से खाना बनाना और उसे औरों को खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। आशाताई उस इंटरव्यू के दौरान जीरा, धनिया और सौंफ से बने एक मसाले का जिक्र कर रही थी। क्या आप जानते हैं कि आशाताई एक रेस्टोरेंट चेन की ओनर थी? आशाज नाम के इन रेस्टोरेंट्स के 10 आउटलेट्स मिडिल ईस्ट और यूके में हैं। जितनी मीठी आशाताई की आवाज है उतनी ही टेस्टी रेसिपीज को बनाना आशाताई जानती थी। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आशाताई की बताई एक स्पेशल मसाला बनाने की रेसिपी सुनेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हम बात कर रहे थे आशाताई की। वैसे पैकेट वाले रेडीमेड मसाले तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन घर पर अपने हाथों से बनाए गए मसालों में अपनेपन की एक महक होती है जनाब। तो चलिए आज हम एक नॉन स्पाइसी टाइप का टेस्टी मसाला बनाने की रेसिपी आपको सुनाते हैं। इस होममेड मसाले को बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सादा जीरा 1/2 किलो, बड़ी शेप मींस सौंफ यानी वरियाली 1/2 किलो, धनिया बीज 1/2 किलो। अब हम इस नॉन स्पाइसी मसाले को बनाने की रेसिपी सुनते हैं। एक कढ़ाई में जीरा लीजिए, लगभग 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर उसे अच्छे से भूनिए। ध्यान रहे उसे क्रिस्पी बनाना है, ना कि जलाना है। अब इस रोस्टेड जीरा को एक बड़ी प्लेट में फैला कर रखिए। इसी तरह से सौंफ और धनिया को भी आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। जब जीरा, धनिया और सौंफ पूरी तरह से ठंडे हो जाए तब उनको मिक्स कीजिए। अब मिक्सर के एक जार में इसे पीस कर इसका फाइन पाउडर बनाइए। जब आप इसे बनाना शुरू करेंगे तब पूरा घर इस मसाले की खुशबू से महक उठेगा। आहा, बिल्कुल आशादाई की आवाज की तरह खिल उठेगा। अब इस इंस्टेंट मसाले को आप एयर टाइट कंटेनर में भर दीजिए। इस मसाले को स्टोर करने के लिए अगर कांच का कंटेनर आप यूज करें तो ये एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इससे उस मसाले की फ्रेशनेस बरकरार रहेगी। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओल्ड रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस नॉन स्पाइसी मसाले को हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो भाई, आप आशाताई स्टाइल की भरी हुई भिंडी की सब्जी बना सकते हैं। पहले तो भिंडी को अच्छे से धो लीजिए, फिर इसको वर्टिकल मींस सीधे टुकड़ों में काटिए, मतलब लंबा लंबा काटिए। फिर उन टुकड़ों को हल्दी, नमक और ये नॉन स्पाइसी मसाला लगाइए। एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कीजिए, फिर लो फ्लेम पर मसाला लगाई हुए भिंडी के टुकड़े डालिए। फिर उस पैन पर ढक्कन रखकर 5 मिनट तक उसे पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद उसे थोड़ा सा ऊपर नीचे मिक्स कीजिए। वापस उस पे ढक्कन लगाकर 2-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाइए। इस तरह से क्रिस्पी भिंडी फ्राई तैयार। गर्मियों में चिप्स या जंक फूड खाने की बजाय आप ये क्रिस्पी भिंडी खाएं और अपनी सेहत बनाएं। वैसे छाछ, कचुम्बर या फिर सैलेड में भी आप ये नॉन स्पाइसी मसाला यूज कर सकते हैं। हर रोज बनने वाली सब्जी या दाल में भी आप ये नॉन स्पाइसी मसाला 1 या 2 चम्मच भर के ऐड कर सकते हैं। वैसे इंदौर स्टाइल पोहा में सौंफ यूज होती है, राइट? तो अगली बार पोहा बनाते वक्त आप ये नॉन स्पाइसी मसाला डाल कर देखिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी अगली जुगाड़ रेसिपी एक महाराष्ट्रियन सब्जी है जिसका नाम है हुड़ा भाजी। हुड़ा भाजी ये एक नॉन फायर टाइप की रेसिपी है। वैसे हुलगा, हुड़िद, इनकी भाजी को भी हुड़ा भाजी के नाम से जाना जाता है। जिस हुड़ा भाजी की रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए इसकी रेसिपी सुनने। हुड़ा भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: स्प्रिंग आनियन मींस हरी प्याज यानी कि पातीचा कांदा। इसे धोकर किसी साफ कपड़े से इसका पानी पोछिए, फिर इसके बारीक टुकड़े कीजिए। इस तरह से कटी हुई प्याज हमें चाहिए 2 बड़ी कटोरी भर के। फिर चाहिए नमक स्वादानुसार, लेकिन यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच नमक ले रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, कच्चा तेल 4-5 चम्मच, दैट्स इट। अब हम सुनते हैं इस हुड़ा भाजी को बनाने की रेसिपी। सबसे पहले बारीक कटी हुई हरी प्याज को नमक और मिर्ची पाउडर लगाकर 5 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। इससे नमक और तीखेपन का स्वाद उस सब्जी में अच्छे से मिक्स होगा। फिर उसमें कच्चा मींस अनकुक्ड यानी सादा तेल बिना गरम किए ऐसे ही मिक्स कर दीजिए। इस तरह से तैयार हो गई है हमारी जुगाड़ रेसिपी जिसका नाम है हुड़ा भाजी। अब आप इसे ज्वार की रोटी के साथ मजे से खाइए। वैसे महाराष्ट्र के गांव में इसे कंफर्ट फूड के नाम से जाना जाता है।
जब मुंह में बेस्वाद सा टेस्ट हो या फिर कभी आपको खाना खाने का मन ही ना करे, तब आप इस रेसिपी को जरूर बनाइए। लगभग 10 से 15 मिनट में रेडी होने वाली ये जुगाड़ रेसिपी आपको स्वाद का जायका जरूर याद दिलाएगी, क्योंकि हमारे दोस्तों की सेहत का ख्याल रखना यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। वैसे पुराने जमाने में बाहर से खाना ऑर्डर करने का सिस्टम तो था नहीं, तब ऐसा जुगाड़ करके अपनी फैमिली के लिए खाना बनाया जाता था। वैसे इंस्टेंट मींस 2 मिनट नूडल से कई ज्यादा हेल्दी तो हमारी जुगाड़ रेसिपीज है, बस जरूरत है तो अपनी सोच को बदलने की। भाई वो कहते हैं ना कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, अब समझदार को इशारा ही काफी है। देसी फूड खाओ और अपनी सेहत बनाओ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारती सिंह। वैसे जुगाड़ रेसिपीज को बनाते वक्त गलतियाँ होने के चांसेस कम होते हैं, और सिस्टमेटिक तरीके से किसी जबरदस्त रेसिपी को बनाते समय मेरे से कंफर्म गड़बड़ तो हो ही जाती है। वैसे मोस्ट ऑफ द डैडी लोग नौसिखिए बच्चों को किचन के काम सीखने के लिए सपोर्ट करते ही हैं, नो डाउट, लेकिन उस वक्त नौसिखिए कुक की मम्मी अलर्ट मोड पर एक्टिव हो जाती है। आई एम श्योर आप मेरे इस बात से सहमत हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर मुझ जैसे नौसिखिए अपने अंदर की कलाकारी दिखाने घर के किचन में VIP एंट्री मारते हैं। तब हमारी हर हरकत पर रिएक्शन होती है, आप समझ रहे हैं ना? इसीलिए जब मम्मी कहीं और गई हो तब मैं किचन में घुसती हूँ। अब मैं आपको एक रीसेंट किस्सा सुनाती हूँ। फ्रिज में जमी ढेर सारी मलाई देखकर मैंने होममेड घी बनाने का डिसाइड किया। इस प्रयोग को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैंने YouTube पर देसी स्टाइल में घी बनाने का वीडियो 5-6 बार देखा। फिर सुबह सवेरे 5 बजे के शुभ मुहूर्त पर हमने किचन में एंट्री मारी। लगभग 1 kg मतलब 1 किलो मलाई में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर उसे चर्नर से मिक्स करना था, और ये मिक्स करने का प्रोसीजर अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 मिनट के लिए चलने वाला था, और मिक्सर को बिल्कुल भी यूज नहीं करना था। लेकिन हुआ यूं कि 5 मिनट में ही मेरा पेशेंस खत्म हो गया और मेरे हाथों में दर्द होने लगा, इसलिए मैंने एक हाथ से मलाई वाले उस बर्तन को टाइट पकड़ा, दूसरे हाथ में चर्नर पकड़कर चम्मच की तरह उसे मलाई वाले बर्तन में घुमाना स्टार्ट किया। अगले 5 मिनट में फिर से मैं थक गई, फिर मैंने लेफ्ट हैंड से चर्नर को घुमाना स्टार्ट किया। कुछ टाइम बाद मैंने डिसाइड किया, सेल्फ डिक्लेयर किया कि जो है जैसे है वो यही है और यही ओके है। फिर मैंने उस बर्तन से लगभग 1 लोटा छाछ निकाल कर साइड में रख दी, और बचे हुए सो कॉल्ड बटर को एक कढ़ाई में डालकर गैस पर पकाने के लिए रख दिया। अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट में ही उसमें से जलने की स्मेल आने लगी, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया। लगभग आधी कटोरी घी जो गोल्डन कलर का था उसे मैंने उस बर्तन से निकाला, सुनहरा घी। फिर बचे हुए मक्खन को दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफर किया, क्योंकि पहली वाली तो जल गई थी। अब उस दूसरी कढ़ाई को भी मैंने गैस पर चढ़ाया, उस कढ़ाई में से भी जलने की स्मेल आने लगी। इस प्रोसीजर में सुबह के 11 बज गए, मतलब टोटल 6 घंटे वेस्ट हुए। फिर थककर मैंने घी बनाने का एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर दिया। इस अनोखे प्रयोग के दौरान हमारे किचन प्लेटफॉर्म पर बर्तनों का ढेर जमा हो गया, और इस प्रकार हमारा मिशन देसी घी जस्ट पास मींस जैसे तैसे सफल हुआ। उस वक्त अगर हमारी मम्मी जी वहां पे मौजूद होती तो फिर तब का नजारा कुछ और ही होता। तब पटाखों की लड़ी से सारा घर गूंज उठता, और अगले कई दिनों तक उसकी गूंज मुझे महसूस होती। जोक सपाट, वैसे मुझ जैसे नौसिखिए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके ही एक दिन महान इंसान बनने वाले हैं, है कि नहीं? वैसे आपकी मम्मी का फेवरेट वेपन कौन सा है जिससे वो आपकी धुलाई करती है? यहाँ पर हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, हम जल्दी ही वापस आएंगे।

वेलकम बैक टू स्वाद का जायका। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब पेश है मम्मी जी के किचन वाले गुस्से पर एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है मम्मी जी का किचन। हमारे किचन की क्वीन मेरी मम्मी, इनके हाथों का खाना मतलब वाव और यम्मी। जब किचन में करती हूँ मैं वीआईपी एंट्री, तब महाप्रसाद मिलना ये बात है कॉम्प्लीमेंट्री। किचन में होते हैं कुछ नए से प्रयोग, तब जोरदार भाषण का होता है संयोग। मम्मी जी को किचन लगता है एकदम प्यारा, एक्सपेरिमेंट करने का मेरा शौक है कितना न्यारा। जब किचन में होता है कोई विशेष गोलमाल, तब मम्मी जी से सुनिए अनोखे से सुर और ताल। देखकर मम्मी जी की मतवाली आंखें, बावरा सा मन मेरा यहाँ वहाँ भागे। किचन के एक्सपेरिमेंट से मचता है शोर, लेकिन हम हैं इतने ढीठ के होते ही नहीं बोर। अब चाहे जो भी हो, हूँ तो मम्मी जी की बेटी, किचन से ही लाऊंगी स्वाद के जायके की पेटी। आई एम श्योर ये कविता सुनकर हमारे ऑडियंस को कुछ अनोखे किस्से जरूर याद आ रहे होंगे। वैसे ये किचन में कुकिंग वाले एक्सपीरियंसेस एकदम यादगार ही होते हैं। भाई बेसिक कुकिंग तो हम सबको आनी ही चाहिए। नूडल्स और सैंडविचेस खाकर हम बोर होंगे तब कुछ और सोचना ही पड़ेगा ना। इसलिए आचार्य 90 एफएम योर ओन रेडियो पर स्वाद का जायका जरूर सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सैंडविच से मुझे याद आया कि चीज बनाने वाली फेमस कंट्रीज में फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में मिलने वाली चीज की वैरायटीज के बारे में कुछ अनोखी बातें मैं बताने वाली हूँ। कलारी जम्मू और कश्मीर का एक लोकल और ट्रेडिशनल हिमालयी पनीर है, जिसे यूजुअली जम्मू का मोजरेला या हिमालयन चीज कहा जाता है। भैंस के दूध से बना ये कलारी चीज मोजरेला चीज जैसे ही होता है। वैसे पिज्जा और पास्ता मेकिंग में मोजरेला चीज का यूज होता है। कलारी चीज पकने के बाद ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और चिपचिपा सा होता है। कलारी चीज का टेस्ट थोड़ा खट्टा और सॉल्टी होता है। वैसे कलारी कुलचा इस फेमस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट कलारी चीज ही है। भाई हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में भी टोपलीनो पनीर मिलता है, जिसे सूरती चीज के नाम से जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के पारसी कम्युनिटी का ये एकदम स्पेशल और ट्रेडिशनल पनीर है। टोपलीनो पनीर इसके नाम से ही पता चलता है कि इसे टोपली मींस बास्केट में बनाया जाता है और इस वजह से इस पर जालीदार निशान होते हैं। टोपलीनो पनीर की स्पेशलिटी ये है कि इसे ताजा ही बनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस देसी पनीर की तारीफ की है और इसे लोकल से ग्लोबल बताया। इसे मोस्टली मुंबई और सूरत के पारसी घरों में बनाया जाता है। सुबाच्छे सरस। इंडियन चीज इज मेकिंग इट्स मार्क ग्लोबली। अब हम बात करेंगे छुरपी पनीर की। याक के दूध से बना ये ट्रेडिशनल और न्यूट्रिशियस पनीर ज्यादातर हिमालयी क्षेत्र स्पेशली नेपाल, सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बहुत फेमस है। छुरपी पनीर दो टाइप की होती है, एक होती है सॉफ्ट वाली जो सूप और करी में यूज होती है, दूसरी होती है एकदम हार्ड वाली जिसे चबाना मुश्किल है और ये कई वर्षों तक खराब नहीं होती। ज्यादा ठंडी वाले इलाके में गर्मी पाने के लिए छुरपी पनीर का इस्तेमाल होता है। वैसे क्या आपने कभी पनीर पानी पूरी खाई है क्या? नहीं। वैसे पनीर आइसक्रीम भी होती है, यकीन नहीं आ रहा है? ठीक है, आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी अगली जुगाड़ रेसिपी एक महाराष्ट्रीयन डिश है जिसका नाम है फोड़नीची पोड़ी मींस तड़के वाली रोटी। अक्सर ऐसा होता है कि रोटियां बची हैं और सब्जी खत्म हो गई, तब करे भी तो क्या करे, ऐसे वक्त पर करना पड़ता है जुगाड़। ऐसा जुगाड़ जिससे सब्जी भी ना बनानी पड़े और रोटियां भी वेस्ट ना हो, तब हम बना सकते हैं फोड़नीची पोड़ी। अब हम इसे बनाने की रेसिपी सुनते हैं। एक सिंपल सा तड़का लगाकर रोटियों का लुक और टेस्ट बदला जा सकता है, तो चलिए
अब हम फोड़नी ची पोड़ी या फोड़नी ची चपाती की रेसिपी सुनते हैं। सपोज आपके किचन में अप्रोक्सीमेटली 6 रोटियां बची हैं, ओके? तो सबसे पहले आप इन रोटियों के छोटे टुकड़े बनाइए। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, सारी रोटियों का रोल बनाइए। उस रोल को चाकू की मदद से पतला पतला काटिए, मतलब लंबा लंबा, जिससे रोटी के टुकड़े नूडल टाइप दिखेंगे। अब एक प्याज बारीक टुकड़ों में काटिए, मींस कांदा काटिए। एक कढ़ाई में तेल या घी को गरम कीजिए, फिर हमें उसमें तड़का लगाना है, इसलिए गरम तेल में चुटकी भर राई, जीरा, बारीक कटी हुई थोड़ी लहसुन, कड़ी पत्ता डालकर भूनिए, उसको गुजराती में बोलते हैं वघार लगाना। फिर उसमें हींग, थोड़ी हरी मिर्ची और कांदा डालिए। 2 मिनट तक इसे पकने दीजिए। आप चाहे तो टमाटर काटकर इसमें डाल सकते हैं। फिर रोटी के टुकड़े और स्वादानुसार नमक डालिए। सब चीजों को अच्छे से मिलाकर उसे पकने दीजिए। फिर उस कढ़ाई पे ढक्कन रखिए, तभी आपको लो फ्लेम पे 2-4 मिनट तक उसे पकाना है। उसमें थोड़ी कोथमीर से गार्निश कीजिए। फिर एक प्लेट में फोड़नी ची पोड़ी को दही के साथ सर्व कीजिए। ये कॉम्बिनेशन आपको सुकून ही देगा, ना रोटियां वेस्ट हुई, ना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। ओके, हमारी आज की जुगाड़ रेसिपीज आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। वैसे बची हुई रोटियों से फोड़नी ची पोड़ी तो हमने बना ली, अब मान लीजिए सफेद चावल बचे हैं, तब क्या करें? अरे भाई फिकर नॉट, सेम स्टेप्स फॉलो करके आप फोड़नी सा भात मींस तड़के वाला चावल भी बना सकते हैं। अब एक और जुगाड़ रेसिपी मैंने आपको इंस्टेंट तरीके से बता दी है। अब लास्ट में हम एक और जुगाड़ रेसिपी सुनते हैं। ये महाराष्ट्रियन और कर्नाटकी स्टाइल का झटपट बनने वाला एक नाश्ता है। सिर्फ 10 मिनटों में ही हम इसे बना सकते हैं और इस नाश्ते वाली रेसिपी का नाम है सुशीला। यस, ठीक सुना आपने, इस रेसिपी को सुशीला कहते हैं। अब हम इसकी रेसिपी सुनते हैं। सुशीला बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कुरमुरा 4 कटोरी, तेल 2 बड़े चम्मच, कच्चा सेंगदाना 1/2 कप, राई और जीरा आधा आधा चम्मच, हींग चुटकी भर, कड़ी पत्ता 15 से 20 पत्ते, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 1 या 2, बारीक कटा हुआ कांदा 1, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक और शक्कर स्वादानुसार, नींबू का रस और कोथमीर गार्निश के लिए। अब हम इसकी रेसिपी सुनते हैं। एक बड़ी छलनी में सारे कुरमुरे डालिए, 1 मिनट के लिए इसे पानी से धोइए, फिर उसका पानी हटाइए। अब हमें तड़का लगाना है। एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए, फिर उसमें राई, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता, सिंगदाना और हरी मिर्ची डालिए। बाद में उसमें प्याज मींस कांदा डालिए। आप चाहे तो बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं। फिर हल्दी डालकर उसे मिक्स कीजिए। फाइनली भीगे हुए कुरमुरे, नमक और शक्कर डालिए। लगभग 2-3 मिनट के लिए उस पर ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर पकाइए। अब कोथमीर और नींबू रस के साथ सुशीला को गार्निश कीजिए। चाय के साथ आप ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक सुशीला का लुत्फ उठाइए। है ना इंस्टेंट जुगाड़ रेसिपी भाई? आपने हमारे आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, अगर नहीं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं दोस्तों, दिल जीत भी लेते हैं और चीर भी देते हैं। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आचार्य 90 FM के ऑडियंस से मिलने का ये मेरा वादा, नहीं सिर्फ वादा नहीं, एकदम पक्का वादा। RJ भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य 90 FM में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर शेख स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि पिछली दफा हमने सुना था कैसे प्री इंडिपेंडेंस एरा में एक प्रेम कहानी पनपने लगी थी और उस कहानी का अंत किस तरीके से हुआ। आज भी मैं लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी। ये कहानी थोड़ी लंबी है पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। जैसे पिछली कहानी में हमने बात की थी एक क्रांतिकारी की, एक प्रेमी की, एक प्रेमी जिसे अपनी मोहब्बत देश के प्रति जितनी थी उतनी थी अपनी प्रेमिका के प्रति भी, पर देश उसके लिए सर्वोपरि था और देश के बाद ही सब कुछ आता था। अब मैं लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसका शीर्षक है दो दोस्त और एक बदला। 1929 का हिंदुस्तान, अंग्रेजी हुकूमत अपनी पूरी ताकत से देश को दबाए बैठी थी। हर शहर में पुलिस चौकियां, हर गली में डर का माहौल और हर दिल में एक ही ख्वाहिश।

आजादी। लेकिन आजादी की कहानी सिर्फ जंग की नहीं होती, कभी कभी वो कहानी होती है दोस्ती की, कभी वफादारी की और कभी बदले की। ये कहानी है दो दोस्तों की, दो ऐसे दोस्त जिनके रास्ते एक ही थे मगर मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ बदल गया। नंदपुर एक छोटा सा गांव था, लखनऊ से कुछ ही दूर। गांव में मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और आम के पेड़। सुबह गांव में मुर्गों की आवाज से होती और शाम को चूल्हों की खुशबू हवाओं में घूमती थी। इसी गांव में दो बच्चे बचपन के दोस्त रहते थे, अमन खान और विक्रम सिंह। दोनों की दोस्ती बचपन से ही मशहूर थी। गांव वाले कहते थे ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते, एक रोए तो दूसरा उसे चुप कराए। अमन थोड़ा शांत था, सोचने समझने वाला। विक्रम तेज था, उसकी आंखों में हमेशा आग सी जलती रहती थी। एक बार जब वो दोनों सिर्फ 10 साल के थे तो गांव में एक अंग्रेज ऑफिसर आया था, उसका नाम था कैप्टन एडवर्ड हॉकिंस। उस दिन गांव के लोगों को जबरदस्ती लाइन में उसने खड़ा कराया, टैक्स बढ़ाया। जब एक बुढ़े किसान रामदास ने थोड़ा विरोध किया तो फिर क्या, अंग्रेजी सिपाहियों ने उसे सबके सामने पीट दिया। छोटा सा विक्रम वो सब देख रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। अमन एक दिन में इन सब का बदला लूंगा, अमन ने विक्रम की ओर देखा। बदला नहीं विक्रम, आजादी। समय बीता, दोनों बड़े होने लगे, अब वो जवान हो चुके थे। 1928 तक पूरे देश में आजादी की आवाज तेज हो चुकी थी। भगत सिंह का नाम लोग चुपके चुपके लेने लगे थे। चंद्रशेखर आजाद की कहानियां लोग रात को आग के पास बैठकर सुनाते थे और नंदपुर के दो जवान भी अब चुप नहीं रहना चाहते थे। एक रात दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, हवा थोड़ी ठंडी थी। विक्रम ने धीरे से कहा, अमन हम भी कुछ करते हैं यार। अमन ने पूछा, क्या? विक्रम की आंखों में वो बचपन वाली आग थी। क्रांति, लखनऊ में एक गुप्त क्रांति दल था, नाम था आजाद सेना मंडली। उसके लीडर थे रघुनाथ बाबू, वो एक स्कूल टीचर थे मगर असली काम था रिवॉल्यूशनरीज को ऑर्गेनाइज करना। एक रात अमन और विक्रम उनसे मिलने गए। छोटी सी हवेली थी, अंधेरा था, दरवाजा खुला था, अंदर एक दिया जल रहा था। रघुनाथ बाबू ने दोनों को देखा, तुम लोग जानते हो क्रांति का मतलब क्या होता है? विक्रम तुरंत बोला, अंग्रेजों को भगाना। रघुनाथ बाबू मुस्कुराए, उससे भी ज्यादा अपनी जान दांव पर लगाना। अमन ने सीधा जवाब दिया, हम तैयार हैं। रघुनाथ बाबू कुछ देर तक उन्हें देखते रहे, सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, तो फिर आज से तुम दोनों आजाद सेना मंडल के हिस्सा हो। तुम दोनों को ट्रेनिंग और मिशन के बारे में कुछ दिनों में बता दिया जाएगा। अब आने वाले अगले कुछ महीनों में दोनों की जिंदगी बदल गई थी। दिन में वो आम गांव वाले जैसे जवानों की तरह रहते थे और रात में वो बन जाते थे क्रांतिकारी। उन्हें सिखाया गया था सीक्रेट मैसेज कैसे भेजना है, कोड कैसे यूज करना है, चिट्ठियां कैसे लिखनी है, तार कैसे पहुंचाने हैं, अपने संगठन का मिशन कैसे दूसरों को बताना है, पुलिस से कैसे बचना है और सबसे जरूरी खुद पर काबू कैसे रखना है। एक रात
ट्रेनिंग के बाद विक्रम ने अमन से पूछा, अमन अगर कभी हम में से किसी को कुछ हो गया तो? अमन थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, तो दूसरा लड़ता रहेगा। 1930 के आसपास अंग्रेज सरकार ने एक नया कानून पास किया था, नाम था सिक्योरिटी सप्रेशन पॉलिसी। इसका मतलब था बिना वजह गिरफ्तारी, बिना ट्रायल जेल, और जरूरत पड़ने पर इनकाउंटर। यह पुलिस बनाने वाले ऑफिसर का यह पॉलिसी बनाने वाले ऑफिसर का नाम था कैप्टन एडवर्ड हॉकिंस, वही आदमी जिसने बचपन में रामदास को मारा था, जिसने नंदपुर के लोगों को डराया था, और अब वो लखनऊ का सबसे पावरफुल अंग्रेज ऑफिसर था। रघुनाथ बाबू ने एक दिन सब क्रांतिकारियों को बुलाया, सब क्रांतिकारी एक जगह इकट्ठा हो गए। रघुनाथ बाबू ने मैप टेबल पर रख दिया, ये हॉकिंस इस वक्त पूरी क्रांति को क्रश करने की प्लानिंग कर रहा है। रघुनाथ बाबू ने कहा, विक्रम का हाथ टेबल पर जोर से पड़ा, तो फिर उसे खत्म कर देते हैं, विक्रम ने कहा। रूम में खामोशी छा गई। रघुनाथ बाबू ने धीरे से कहा, हर गोली एक जंग शुरू करती है और हर जंग में खून बहता है। अमन ने पूछा, प्लान क्या है? रघुनाथ बाबू ने कहा, हमें हॉकिंस की फाइल्स चाहिए, उसमें सब क्रांतिकारियों की लिस्ट है, अगर वो फाइल्स मिल गई तो हम सब बच सकते हैं, वरना उस फाइल्स में हम सभी के नाम हैं, और ये अंग्रेजी हुकूमत हम सबको एक एक करके ढूंढेगी और फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे रघुनाथ बाबू ने ये कहानी कही, ये बात बताई, सब लोग शांत हो गए और अचानक से उस कमरे में

तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद आचार्य 90 FM में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपको सुना रहा था एक कहानी, दो दोस्त और एक बदला, जिसमें आपने अभी तक सुना है कि अमन और विक्रम दोनों एक क्रांतिकारी दल से जुड़ चुके हैं और एडवर्ड हॉकिंस किस तरीके से अपनी नई पॉलिसी लोगों पर थोप रहा है और उसके जरिए वो लोगों को परेशान कर रहा है। और इस समय उस क्रांतिकारी दल का मकसद है सिर्फ उन फाइल्स को चुराना जिनमें क्रांतिकारियों के नाम छुपे हुए हैं। तो देखते हैं कहानी का आगे वाला हिस्सा। फाइल लखनऊ के ब्रिटिश सेक्रेटरियल में थी, वहां घुसना मुश्किल था, मगर अमन ने एक आइडिया दिया, अगर कोई अंग्रेज सरकार में ही काम करे तो कैसे रहेगा। सब उसकी तरफ देखने लगे। विक्रम ने हैरानी से पूछा, मतलब? अमन ने धीरे से कहा, मैं ब्रिटिश पुलिस ज्वाइन करूंगा। रूम में सब स्टंड थे, सब शांत थे। तुम पागल हो गए हो क्या, विक्रम चिल्लाया। अमन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये सिर्फ एक रोल होगा अंदर घुसने के लिए। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। लोग तुम्हें गद्दार कहेंगे अमन। अमन ने शांत आवाज में जवाब दिया, आजादी के लिए कभी कभी गद्दार बनना पड़ता है। उस रात विक्रम और अमन नंदपुर के उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा तेज चल रही थी। विक्रम गुस्से में था। तुम अंग्रेजों के साथ काम करोगे? अमन, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारा ये आइडिया बकवास है, तुम ये छोड़ दो। लोग तुम्हें गद्दार कहेंगे, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, अमन ने कहा। विक्रम, अंग्रेजों के साथ काम करना सिर्फ एक दिखावा होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और हम दोनों के लिए और हमारे पूरे देश के लिए फिलहाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कुछ है तो वो है आजादी। पर दुनिया को क्या पता होगा, विक्रम बोला। दुनिया को नहीं, तुम्हें पता है ना। मुझे दुनिया से क्या लेना देना विक्रम, तुम जानते हो ये केवल एक रोल है आजादी के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तुम जानते हो, तुम्हें सच्चाई पता है, मुझे इसके अलावा किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। ये बातें सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए और आंसुओं को पोंछते हुए उसने कहा, बस एक बात याद रखना अमन, अगर तुम सच में उनका हिस्सा बन गए तो सबसे पहले गोली मैं चलाऊंगा। अमन मुस्कुराया, तब तक मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। दोनों हंस पड़े, मगर उस रात दोनों को पता नहीं था ये फैसला उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। फिर क्या, अमन चल पड़ा एक अलग सफर पर और विक्रम चल पड़ा एक अलग सफर पर। जैसे कि अमन ने कहा वो ब्रिटिश पुलिस ज्वाइन करेगा, तो वो लगा अब मशक्कत मेहनत करने के लिए। उसने तरह तरह के पैंतरे यूज किए, तरह तरह के हथकंडे यूज किए। वो कोशिश करने लगा कि किसी तरह वो ऐसा कुछ करे कि ब्रिटिश अफसर्स के नजर में वो आ जाए और वो लोग अमन को ब्रिटिश पुलिस में ज्वाइन कराए। तो दूसरी तरफ विक्रम

और ज्यादा सक्रिय हो चुका था संगठना में, वो और ज्यादा तेज हो चुका था। अब उसका काम बढ़ चुका था, अब वो क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने लगा, गांव गांव जाकर मीटिंग्स लेने लगा, गांव गांव जाकर लोगों को आजादी का महत्व बताने लगा। और ठीक इसी तरह अब दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी, दोनों के रास्ते बदल चुके थे। जो दो दोस्त कभी एक हुआ करते थे, जिनकी मिसाल पूरा गांव देता था कि ये दो लोग कभी अलग नहीं हो सकते, अब वो दो लोग अलग थे पर उनका मकसद एक था, आजादी। कुछ महीने बाद अमन को ब्रिटिश पुलिस में नौकरी मिल गई। अब वो सब इंस्पेक्टर अमन खान था। अंग्रेज ऑफिसर्स उसको पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था, डिसिप्लिन था और लॉयल लगता था। मगर किसी को पता नहीं था कि हर रात वो सीक्रेटली आजाद सेना मंडल को इन्फॉर्मेशन भेजता है। विक्रम भी एक एक्टिव रिवॉल्यूशनरी बन चुका था। वो पोस्टर चिपकाता था, सीक्रेट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता था और कभी कभी पुलिस से भागता भी। मगर उसके दिल में एक डर था, कहीं अमन सच में बदल ना जाए। और एक दिन 1931 की बात है, लखनऊ में अचानक पुलिस की रेड पड़ी, कई क्रांतिकारी पकड़े गए और उनमें से एक था विक्रम सिंह। जब उसे पुलिस जीप में बिठाया गया तो उसने देखा सामने खड़ा हुआ ऑफिसर कौन है। खड़ा हुआ ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त सब इंस्पेक्टर अमन खान है। दोनों की आंखें मिली मगर अमन का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, जैसे वो उसे जानता ही ना हो। विक्रम के दिल में एक ही ख्याल आया, शायद मैं गलत था, शायद अमन सच में बदल गया। विक्रम के दिल में बहुत सारे ख्यालों में से एक ख्याल ये भी था कि कहीं अमन ने तो अंग्रेजी अफसरों को ये हमारे छुपे हुए ठिकानों के बारे में तो नहीं बताया, क्या अमन की वजह से तो हम क्रांतिकारियों पर रेड नहीं पड़ी, क्या अमन की वजह से हम पकड़े गए। ऐसे तरह तरह के सवाल उस रात विक्रम के जहन में, दिलो दिमाग में उठ रहे थे। दोस्ती, वफादारी और आजादी की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई, मगर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अंग्रेज जेल के अंधेरों में एक दोस्त मरने वाला था और दूसरा एक ऐसा बदला लेने वाला था जिसे पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। तो दोस्तों, अब विक्रम जेल में है और उसके दिल में ये सवाल है कि अमन पूरी तरह से बदल चुका है और वो ब्रिटिश पुलिस का वफादार है। दोस्ती, आजादी उसके लिए अब कुछ मायने नहीं रखती। वहीं दूसरी तरफ अमन के दिल में, दिलो दिमाग में बस एक ही चीज मौजूद है और वो ये कि लखनऊ से किस तरीके से क्रांतिकारियों के नाम की फाइल वो चुरा ले और उसे खत्म कर। तो कहानी का अगला भाग देखते हैं हम एक ब्रेक के बाद, तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

अपनी माँ की इकलौती बेटी और अपने स्टेप डैड की पांचवी बेटी, सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की।

वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि पिछली कहानी में हमने सुना था कि सुमन और विकास, यानी विकास किस तरह अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कड़ी मशक्कत करता है और कैसे कैसे पैसे जमा करके अपनी बीवी को होटल शालीमार लेके जाने की उसकी जो ख्वाहिश होती है वो पूरी करता है। अब दोनों जो होटल शालीमार पर आके पहुंच गए तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो सुनते हैं कहानी का अगला भाग। विकास और सुमन अब होटल के बाहर खड़े हैं, एक अलीशान होटल जो मुंबई में किसी JW मैरिट होटल से कम नहीं, ठीक उसी तरह दोनों बाहर खड़े। दोनों के मन में न जाने कितने अनगिनत सवाल है, ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद उन्हें कोई ना दे सके, वो खुद भी नहीं जानते कि इन सवालों का जवाब ढूंढे कहां से। एक जो सोशल स्टिग्मा होता है वो उन पे आ गया था, जो सोशल टाबू हो जाता है कि गरीब लोग बड़े होटल में नहीं जा सकते। हाँ, जाने शायद बचपन में उन्होंने ये सुना हो तो इसीलिए वो जिस तरीके से धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहे थे उस होटल की ओर, उनके दिल में ना जाने कितने कश्मकश, कितने सवाल, कितनी बेचैनियां उमड़ रही थी अंदर, एक सैलाब उमड़ रहा था कि वो सच में जाए या ना जाए। सुमन ने विकास का हाथ थामा और कहा कि क्या हमें अंदर जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? विकास ने जवाब दिया। वो क्या है ना कि आप तो जानते ही हैं कि हम कितने गरीब हैं और यहाँ पे आने वाले सारे अमीर, तो क्या हमारा जाना सही होगा? लोग हमें किस नजर से देखेंगे? आपको नहीं लगता कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमें वापस लौट जाना चाहिए घर? बड़ी धीमी आवाज से सुमन ने कहा यह। भला क्यों हमें लोग बुरी नजर से देखेंगे या ऊंच नीच वाली नजर से देखेंगे? हमारे पास पैसे है भाई, और हम थोड़ी किसी का फ्री में खाना खाने आए हैं ना, हम तो पैसे लेके आए हैं, और पैसे है तो खाना खाया जा सकता है। यहां पे क्या, लंदन में भी खाना खाया जा सकता है अगर पैसे है तुम्हारे पास। बड़ी मजाकिया तौर पर विकास ने सुमन से कहा, और यही कुछ चीजें थी, यही विकास का कहा हुआ था जो सुमन के अंदर उसने हौसला पैदा किया, और दोनों ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, वो जाएंगे अंदर। धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे कदम दोनों के बढ़ते रहे होटल की ओर, और जब होटल के दरबान के पास पहुंचे तो विकास ने अपनी जेब में से, ऊपर वाली जेब में से, शर्ट की जेब में से 50 रुपए निकालकर, जो शायद उसने पूरे दिन भर में कमाया था बूट पॉलिश करके, वो 50 रुपए जो उसने उसके ऊपर की जेब में रखे थे वो निकालकर रख दिया दरबान के हाथ में, ताकि दरबान उन दोनों को अंदर जाने से रोके नहीं। अब ये बात विकास को संदेश ने बताई थी कि अगर तुम कभी भी किसी बड़े होटल में जाते हो और शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पहनावे से या तुम्हारे रंग रूप से कोई तुम्हें बाहर निकाले, तो सबसे पहले एक चीज जरूर कर लेना कि किसी भी होटल के दरबान को कुछ पैसे उसके हाथ में रख दो, तो वो आपको कभी रोकेगा नहीं, वो आपको बड़ा आदमी समझेगा। और यही विकास ने किया, और दरबान के हाथ में 50 रुपए रख दिए, सुमन और विकास दोनों अब अंदर चले गए। अब दोनों अंदर चले गए, देख रहे हैं कि जाके कहां बैठे कहां बैठे कहां बैठे, समझ में नहीं आ रहा। कुछ टेबल खाली है लेकिन उनके ऊपर एक लंबा सा
कुछ रखा है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो उसी एक ऐसे बड़े से टेबल पर जिस पर कुछ लिखा हुआ है रिजर्व जैसा, वहां पर सुमन जाके बैठने की कोशिश करती है, उतने में पीछे से एक वेटर आता है, मैडम मैडम रुक जाइए, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ये ऑलरेडी किसी ने बुक किया हुआ है। तो सुमन एक मिनट के लिए शॉक हो जाती है कि ये क्या कह रहा है, किसी ने बुक किया, ये क्या होता है। तो वो वेटर उसे कहता है कि यहाँ पे कोई आने वाला है, उसने हमें पहले ही सूचना कर दी है कि वो यहाँ पे आएंगे और ये टेबल उनके लिए ही बुक है, आप एक काम कीजिए वो वहां पे देखिए टेबल खाली है, वो किसी के लिए बुक नहीं है, आप और सर वहां पर जाके बैठिए। अब जिंदगी में पहली बार किसी व्यक्ति ने विकास को और सर बोला था, तो विकास काफी खुश हुआ कि हाँ चलिए किसी ने तो हमें सर बोला। अब विकास और सुमन बैठे हैं दोनों उस टेबल पर इसी इंतजार में कि खाने में क्या मंगा है। अब वो जो बड़ा सा मेन्यू कार्ड उनके सामने रखा है वो तो उनको समझ नहीं आएगा कि इसमें से क्या मंगा है, क्योंकि उनको पढ़ना तो आता नहीं है और वो ठहरे देसी और बड़े सिंपल से बड़े भोले से लोग, तो उनको पता भी नहीं कि कैसे खाना मंगाया जाए यहाँ पे। तो वो विकास जो है एक वेटर को आवाज देता है, भैया जी आइए। तो आजू बाजू वाले लोग उसे देखने लगते हैं, तो दूर दो टेबल छोड़कर खड़ा हुआ एक वेटर समझ जाता है कि ये नए नए आए हैं, इनको शायद से और तरीका नहीं पता या ये नहीं जानते कि वेटर कह के पुकारा जाता है। तो वो वेटर संदेश, हाँ सॉरी,

नहीं जानते इसमें क्या है, पर आप अगर हमारी कुछ मदद कर दें तो हमें क्या खाना है हम आपको बता देंगे। तो उस तरीके के पकवान का आपके पास कुछ हो तो ज़रूर ले आइएगा। तो वेटर हंसता है और कहता है कि हाँ हाँ बताइए सर, आपको क्या चाहिए, मैं वो चीज़ें अगर हमारे पास होगी तो मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा। विकास कहता है बताओ सुमन जी क्या खाना है आपको। सुमन जी कहती है हमें वो पनीर की सब्जी खानी है, मटर पनीर, पालक पनीर। तो विकास वेटर को अब ऑर्डर देने लगते हैं, एक काम कीजिए आप मटर पनीर होगा आपके पास। तो वेटर कहता है हाँ, तो मटर पनीर लाए। पालक पनीर होगा आपके पास? हाँ है, तो एक पालक पनीर और रोटी लाइएगा, रोटी आठ पूरी रोटी लाइएगा, आठ। और दाल चावल मिल जाएगा आपके पास? हाँ मिल जाएगा, हाँ तो वो लाइए। और हाँ हाँ सुनिए, ये ऑर्डर सब लाने, ये सब खाना लाने से पहले वो जो कोल्ड ड्रिंक होती है शिकंजी वो दो लाइएगा, दो बड़ी वाली बॉटल में जो आती है, एक मैडम जी के लिए और एक हमारे लिए। और जब खाना पूरा खत्म हो जाएगा ना तो मैडम जी के लिए चार आइसक्रीम लाना, चार। तो वो वेटर जानने लग जाता है कि ये पहली बार आए हैं और बड़ा खुश होता है वो वेटर ये देखकर कि एक पति अपनी पत्नी के लिए किस तरीके से उसकी जिद पूरी करने के लिए किस तरीके से होटल में आकर उसके लिए तरह तरह के व्यंजन का ऑर्डर दे रहा है। अब 5-10 मिनट हो जाते हैं और खाना आता नहीं है। खैर कोल्ड ड्रिंक्स तो आ जाती है। तो सुमन जी कहती है विकास जी कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो रहा है, हमें तो लगा था कि हम जाएंगे और कहेंगे कि ये खाना लाओ और ये लेके आ जाएंगे, पर अब तो 10-15 मिनट हो गए, अब तक तो कुछ नहीं आया, ये सिर्फ शिकंजी ला के दिए, बस यही पी के जाना है हमें। तो इतने में विकास उस वेटर को दोबारा बुलाता और कहता है कि भैया जी अभी तक खाना नहीं आया। तो वेटर विकास से कहता है कि सर आपको शायद पता नहीं है पर यहाँ पे जब भी आप ऑर्डर देते हो तो लगभग 25 से 30 मिनट लग जाते हैं आपका खाना आने के लिए, क्योंकि जब आप ऑर्डर देते हो तो फिर वो ऑर्डर हम लेने के बाद वो खाना पकाया जाता है फिर लाया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपका खाना अभी हम लाके आपको परोसते हैं। तो 15 मिनट के बाद वेटर सारा ऑर्डर लाता है। विकास और सुमन खाना खाना शुरू करते हैं। रोटी का एक एक निवाला जैसे मानो एक एक तारे विकास ने तोड़ कर लाए और सुमन के हाथ में दिए, जैसे किसी भी प्रेमिका को प्रेमी एक एक तारा तोड़ कर लाके देता है और उसके हाथ में रखता है और प्रेमिका कितनी खुश होती होगी वो एक एक तारे को देखकर, ठीक उसी तरह रोटी का एक एक निवाला सुमन को वही याद दिला रहा था कि मानो विकास ने आसमान से न जाने कितने तारे तोड़कर लाए हैं और आज उसके कदमों में बिछा दिए, आसमान का पूरा चांद उसके कदमों में बिछा दिया उसकी वो एक ख्वाहिश पूरी करकर। अब खाना खत्म हो गया, खाना खत्म होने के बाद आइसक्रीम आई, अब आइसक्रीम भी खत्म हो गई। अब आइसक्रीम खत्म होने के बाद दोनों ने चाहा कि हाथ धोया जाए अभी, तो उतने में वेटर ने गर्म पानी से भरा हुआ बाउल उनके सामने लाके रखा और एक प्लेट में 8-9 पीसेस ऑफ लेमन्स लाके रखे। अब उनको क्या लगा वो लेमन उस बाउल में निचोड़ना है और पी लेना है। तो उसने कहा कि वेटर से विकास ने कि भैया हमने तो ये नींबू पानी ऑर्डर नहीं किया था, आपने क्यों लाया? तो फिर

देखने लगा, बोला ये नींबू पानी नहीं है, ये जो आप कटोरा देख रहे हैं ये गर्म पानी का कटोरा, इसमें आप अपने हाथ धोइए, हाथ धोने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, और आपके उंगलियों पर जो चिपचिपापन है तो ये आप नींबू अगर इस पे मसलेंगे तो ये चिपचिपापन आपका चले जाएगा, और वो हाथ में धोते रहिए, हाथ धोते रहिए उस कटोरे में। तो ये पहली बार हो रहा था विकास और सुमन के साथ, तो ये काफी अद्भुत अनुभव था उनके लिए, और वो बहुत ज्यादा एकदम एक बच्चे की तरह एक्साइटेड थे कि देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, हमको कहीं जाना नहीं है और हमारे हाथ धोने के लिए यहाँ पे कटोरा भी लाया जा रहा है जिसमें हम हाथ धो रहे हैं, नींबू लगा रहे हैं। ये बहुत एक अलग अनुभव था उनके लिए। तो अब हाथ धो लिया, खाना खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, और उसके बाद बारी आई बिल देने की। तो बिल देने के लिए विकास ने कहा वेटर से कि हमें बता दीजिए कितना पैसा हुआ है तो हम दे दें और जाएं यहां से। तो वेटर चले जाता है और बिल लेके आता है, और बिल लेके आता है तो लगभग 1800 रुपए बिल हुआ होता है, और विकास के पास तो 2250 रुपए हैं। तो वो तो खुश हो जाता है कि चलो 450 रुपए मेरे पास बच ही गए। अब वो बिल देखता है और अपनी जेब में सीधे साइड वाले पैंट की जेब में जब वो हाथ डालता है पैसे निकालने के लिए, तो वो देखता है कि उसका जो हाथ है वो पूरा आर पार चला गया, यानी जो पैंट विकास ने पहनी है वो फटी हुई है। अब विकास बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है, वो अपने दूसरे जेब में हाथ डालता है, वहां पे उसे पैसे नहीं मिलते, वो पैंट के पीछे वाले जेब में हाथ डालता है, वहां उसे पैसे नहीं मिलते। वो धीरे से सुमन से कहता है कि सुमन जी हमने आपको पैसे दिए क्या रखने? सुमन जी कहती है नहीं, आपने हमें तो पैसे नहीं दिए, आपने आपके पैंट के जेब में रखे थे ना निकलते समय। तो बीवी को कोई चिंता ना हो इस कारण विकास जोर से हंसता है, हाँ हाँ मेरे ही जेब में, मैं तो देख रहा था कि कहीं तुम परेशान तो नहीं होती अगर मैं ऐसे कहूँ तो। और अंदर विकास बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि तुम 2 मिनट रुको हम आ रहे। ये कहकर विकास बाहर जाता है और देखता है कहीं वो पैसे रिक्शा से उतरते समय उसने गिराए तो नहीं या वहां गिर तो नहीं गए। तो वहां पे जाके पूरा देख के आता है पर उसे वो पैसे मिलते नहीं है। वो जहां जहां से चल के आया ठीक उसी तरीके से वहां पे फिर से दोबारा चलकर जाता है, देखता है कि पैसे उसे मिल जाए पर वो पैसे उसे मिलते नहीं है। और वो परेशान होकर 10 मिनट बाद जब फिर से दोबारा होटल में आता है तो वेटर भैया को दोबारा आवाज लगाता है कि हमारे पास पैसे थे पर हम नहीं जानते कि ये बिल भरने के लिए जो हम आपको पैसे देने वाले थे ये कहाँ गिर गए। हम घर से लेके निकले थे पैसे, पैसे हमारे पास मौजूद थे पर जब हमने ये आपको पैसे भरने के लिए जेब में हाथ डाला तो हमारी पतलून की जेब फटी निकली। विकास वेटर से कहता है, वेटर कहता है कि देखो हम जानते हैं ये तुम्हारे हथकंडे है, पहले तो एकदम अच्छा अच्छा खाना खा लो और बाद में बोल दो पैसे नहीं है और कहीं से यहां से बच के निकल जाओ। हम ठीक से जानते हैं तुम गरीबों की ये सारी हरकतें, तो चुपचाप से अपना बिल भरो और जाओ यहां से, निकलो यहां से। वेटर कहता नहीं नहीं वेटर भैया, सच में हमारे पास पैसे थे, 2250 रुपए थे, हमने मेहनत से कमाए थे, हमने दो दो जगह काम करके ये पैसे कमाए थे, हमारी सुमन के लिए कमाए थे, ये पैसे थे हमारे पास, हम झूठ नहीं कह रहे, हम घर से लेके निकले थे तो पैसा लेकर निकले थे, हमने अपनी जेब में ही रखा था ये पैसा पर हम नहीं जानते थे कि पतलून हमारी फटी हुई है, पैसे गिर गए हैं।
आप हमारी बात का भरोसा कीजिए, हम आपके पैसे चुका देंगे, फिर से दोबारा मेहनत करेंगे, लेकिन आप हमारी बातों को समझिए, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमें माफ कीजिए, हमें जाने दीजिए। विकास गिड़गिड़ाकर रोकर विनती करता है उस वेटर से कि वो उसकी बात मान जाए और किसी तरीके से सुमन और विकास को घर जाने के लिए दे दे। वेटर नहीं मानता, वेटर कहता है नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, तुम्हें अब यहां पे काम करना पड़ेगा, यहां नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें अब यहां बर्तन मानने पड़ेंगे, खाना खाते समय तुम्हें नहीं सूझा कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास, अब ये सब तुम्हें सूझेगा जब तुम बर्तन मांजोगे, जब 15 दिन बर्तन मांजोगे तब जाके ये जो तुम्हारा बिल हुआ ये पूरा होगा, तो चलो उठो उठो उठो चलो बर्तन मांजने चलो। ये कहकर वेटर विकास को अभी चेयर पर से उठाने लगता है। ये सारा मांजरा देखकर सुमन बहुत रोने लगती है और वो खुद को दोष देने लगती है कि ये उसी की ख्वाहिश थी जो आज उसके पति की बेइज्जती हो रही है, अगर वो अपनी ख्वाहिश नहीं बताती तो शायद ये दिन कभी आता नहीं और विकास कभी उसे वहां लेकर नहीं जाता, ये सब मामला नहीं होता और विकास की इतनी बेइज्जती नहीं होती। सुमन इसी चक्कर में रोने लग जाती है और अपने आप को कोसने लग जाती है। उतने में विकास उससे कहता है कि सुमन जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अब शांत रहिए, कुछ नहीं होगा, आप घर जाइए, हम काम करके आ रहे हैं, ये है ना इसके पहले भी काम कर लेंगे थोड़ा और काम, और आपके लिए ही तो कर सकते हैं ना काम, आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप हमारी अर्धांगिनी हो, धर्मपत्नी हो, अगर आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, तो आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम बस ये काम खत्म करके आ ही रहे घर, आप जाइए। ये कहकर विकास सुमन को होटल बाहर होटल के बाहर जाने पर मजबूर तो कर देता है, पर सुमन जाती नहीं है, वो होटल के बाहर ही विकास का इंतजार करती है। विकास अपने मायूस चेहरे को लेकर उस वेटर के साथ धीरे धीरे धीरे धीरे किचन की ओर कदम बढ़ाता है, जहां पे पूरा बर्तन धोने का एक अलग सा डिपार्टमेंट है, वहां जाता है, देखता है तो न जाने सैकड़ों थालियां पड़ी हुई, बड़े बड़े पतीले पड़े हुए हैं, न जाने कितना सामान जो धोने के लिए पड़ा हुआ है, और वो जो वेटर होता है वो कहता है कि आज तुम्हें इतना पूरा बर्तन धोना है और रोज आके यही काम करना है आने वाले 15 दिनों तक, तब जाके तुम्हारा बिल पूरा होगा। विकास गरीब क्यों ना हो पर एक खुददार आदमी था, वो जानता था कि अगर उसने खाना खाया है और अभी उसके पास पैसे नहीं है बिल चुकाने के लिए तो वो ये काम जरूर करेगा। तो विकास अपना शर्ट उतारता, अपनी पैंट उतारता और एक लंबा सा रखा हुआ कपड़ा पहनता है ताकि उसके जो शादी के कपड़े सफारी वो गंदा ना हो, और वो कपड़ा लपेट कर एक लुंगी जो रखी हुई होती है वहां पर वो लपेट लेता है और सोचता है वही लपेट कर वो काम करेगा। अब वो लुंगी लपेट लेता है और बड़ा सा पतीला को खींचते हुए अपने पास लेके आता है, ब्रश उठाता है, उस पर थोड़ी सी टिकिया लगाता है और पतीले में जैसे हाथ मांझने जाता है, वो पतीले को मांझने जाता है, उसकी नजर उठती है, जाती है अपने पैंट पर, और पैंट की जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहां पे तुरपाई की होती है पैंट को, वो हिस्सा फटा हुआ होता है, लगभग 2 से 3 इंच, और उस फटे हुए हिस्से में वो पैसे जाकर अटक जाता है जो विकास ने अपने सीधे साइड के पतलून में, जो फटी हुई जेब है वहां पे जब वो डालते हैं तो वो पैसे कहीं गिरते नहीं है, उसी की ही पतलून के जो नीचे वाले हिस्से में जाके अटक जाता है। और तब विकास को याद आता है कि ये जो शरारत है
یہ اور کسی کی نہیں۔ اس الماری میں گھومتے پھرتے ہوئے، اس کے گھر میں ٹہلتے ہوئے چوہوں کی ہے۔ یہ چوہے ہی تھے جنہوں نے اس کا جیب قطر دیا، اور یہ چوہے ہی تھے جنہوں نے وہ ترپائی کو کاٹ دیا تھا، اور اس ترپائی میں وہ پیسے جاٹ کے تھے۔ تو وکاس جب وہ پیسے دیکھتا ہے تو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اور بہت زور سے چلاتا ہے، جیسے مانو اس نے آسمان پا لیا ہو، جیسے مانو اس نے بھگوان کو پراپت کر لیا ہو، جیسے مانو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہو۔ اتنا زور سے چیختا ہے اور جا کر سیدھے وہ پیسے لیتا ہے۔ وہ پیسے اب وہ پینٹ میں نہیں ڈال کر اپنی شیروانی کے اوپر والے حصے میں رکھتا ہے، شیروانی پہنتا ہے اور آتا ہے ویٹر کے پاس اور اس سے کہتا ہے، بھیا جی ہم آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ پیسے تھے ہمارے پاس، اور پیسے ہے ہمارے پاس، یہ دیکھیے یہ پیسے جو ہے ہمارے ترپائی میں اٹکے ہوئے تھے پینٹ کے نیچے والے حصے میں، شاید وہ چوہوں نے قطر دیا تھا، اور ہماری جیب بھی، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے آپ سے۔ اب یہ آپ کا پیسہ لیجئے کھانے کا اور ہمیں جانے دیجئے، ہماری سمن ہمارا باہر انتظار کر رہی ہے، نہ جانے کتنی رو رہی ہوگی وہ۔ اور ٹھیک اسی طرح وکاس وہ بل پے کر کے جب باہر آتا ہے تو سمن روتی ہوئی اس ہوٹل کے باہر جو ایک چھوٹا سا مندر ہے وہاں پہ روتی ہوئی یہ پرارتھنا میں لگی ہوئی ہے کہ بس جلد سے جلد اس کا پتی وکاس باہر آ جائے۔ اور وکاس جب باہر آتا ہے تو وکاس اس سے وہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ کیسے کیسے اس سے وہ پیسے پھر ملے، اور دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور بچے ہوئے 450 روپے جو ہوتے ہیں اس کے پاس وہ پیسے وکاس سمن کے ہاتھوں میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لکشمی کو لکشمی کے پاس ہی ہونا چاہیے، میرے پاس آپ وہی کافی ہے، آپ یہ لکشمی کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ اور دونوں خوش ہو کر اپنے گھر کی اور چلے جاتے ہیں۔ تو دوستوں کہانیاں ہمیں اپنی زندگی میں کچھ ایسی سیکھ دیتی ہے کہ جو شاید ہم نے کبھی سوچی بھی نہ ہو، جیسے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، اور ہم بس یہی کوشش میں رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہماری تکلیف ہماری پریشانی ختم ہو جائے، اور اچانک سے ایک ایسا راستہ کھلتا ہے کہ شاید ہم نے جس کی کبھی امید نہیں کی ہوتی، اور وہاں سے ہماری اس پریشانی کا حل آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جب بھگوان ایک دروازے بند کرتا ہے تو 10 دروازے کھولتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہوا وکاس اور سمن کی کہانی میں، جہاں انہیں لگا کہ سارے دروازے بند ہیں، اب کوئی یہ پریشانی ختم ہی نہیں ہوگی، یہ پریشانی ٹل ہی نہیں سکتی، یہ پریشانی کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اور اچانک سے ایک ایسا حل آیا اس کہانی میں کہ جس کی کسی نے کبھی کلپنا ہی نہیں کی ہوگی، جس کی کلپنا نہ شاید سمن نے کی، نہ وکاس نے کی، نہ ویٹر نے کی، نہ کسی نے کی، پر بھگوان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آپ کی نیتی، آپ کے اچھے کام، آپ کی محنت آپ کو اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے کہ آپ کی کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو وہ ایک پل میں حل ہو جاتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا یہ کہانی کو سننے کے لیے۔ میں پھر سے لوٹوں گا دوبارہ ایک نئی کہانی لے کر، تب تک آپ سنتے رہیے آچاریہ 90 FM، اور ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک ایسی کہانی جو شاید آپ کے دل میں گھر کر جائے۔

अगर गुमनाम है कोई तो उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे आपका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। आचार्य 90 FM को जब साथ आप जैसे ऑडियंस का मिल जाए। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे प्यारे ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। तुम कसो असा, हाउ आर यू ऑल। भाई गर्मी से तो सबका ही एकदम खराब हाल है। अब इस गर्मी की मार को थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं जिनमें अच्छी रेसिपीज और कुछ अपनापन भी हो। तो फिर चलिए ऐसी रेसिपी सुनाते हैं जो सुपर फूड होने के साथ साथ फेमस रेसिपी भी है। पहले आप मुझे बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फूल जो पवित्रता, सौंदर्य, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, उसका नाम क्या है? ये कीचड़ भरे तालाबों में उगता है लेकिन फिर भी निर्मल होता है। ये स्टेडी वाटर मतलब रुका हुआ पानी तालाब और कीचड़ में उगता है। इस फूल की पंखुड़ियों पर पानी नहीं रुकता। ये जीवन की चुनौतियों के बीच भी पवित्र रहने का प्रतीक है। इसे डेकोरेशन, मेकअप और मेडिसिंस में भी यूज करते हैं। वैसे माता लक्ष्मी इसे अपना आसन बनाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में इसे पद्म के नाम से जाना जाता है। कुछ याद आ रहा है? कश्मीर में इस खूबसूरत फूल के तने से नदरू नाम की सब्जी बनती है। यस, सही गेस किया आपने। मैं बात कर रही थी कमल के फूल के बारे में, लेकिन हमारी आज की रेसिपी इस कमल के फूलों के बीज से बनने वाली है। आमतौर पर इसे मखाना या फॉक्स नट्स मींस कमल के बीज के नाम से जाना जाता है। ये एक सुपर फूड ही नहीं, एकदम फेमस सुपर फूड है। इसे मेनली बिहार के तालाबों और झीलों में उगने वाले कांटेदार पौधों से पाया जाता है। वैसे दुनिया का 85% मखाना तो हमारे बिहार में ही पाया जाता है। लो कैलोरी और हाई फाइबर वाला ये मखाना एंटी एजिंग होता है। इसे खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। क्या आपने इसे घी रोस्ट करके कभी खाया है क्या? एकदम टेस्टी टेस्टी स्नैक आइटम है ये जनाब। तो चलिए आज हम एक फेमस मिठाई बनाते हैं जिसका नाम है मखाना खीर। आप इसे व्रत या किसी खास मौके पर 15 से 20 मिनटों में बना सकते हैं। वैसे कैल्शियम और प्रोटीन से भरी ये मखाना खीर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों ही देगी। हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम आज इसे बना रहे हैं। मखाना खीर बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। मखाना 2 कप मींस अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 grams, फुल क्रीम मिल्क 1 लीटर, देसी घी 2 चम्मच, चीनी 1/2 कप या स्वादानुसार, इलायची पाउडर 2 चुटकी, चॉप ड्राई फ्रूट्स 2 बड़े चम्मच, मुनक्का 1 चम्मच, 2 चम्मच दूध में भिगोए हुए केसर के धागे 8 से 10, और ढेर सारा प्यार भी चाहिए क्योंकि आपके मन की भावनाएं इसमें उतरने वाली है। अब हम इसकी रेसिपी सुनते हैं। एक कढ़ाई में घी को गर्म कीजिए, फिर उस घी में धीमी आंच पर मखानों को भून लीजिए। थोड़ी देर मतलब 4-5 मिनटों में मखाने क्रिस्पी होंगे। उन गर्म मखानों को ठंडा करें और मिक्सर में पीस लीजिए। ध्यान रहे मखानों को पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है, इसे जाड़ा जाड़ा मींस दरदरा पीस लीजिए। फिर एक मोटे बेस वाले बर्तन में दूध को उबालिए, फिर उसे कुछ टाइम के लिए लो फ्लेम पे पकाइए। लगभग 10 मिनटों के बाद वो दूध गाढ़ा बनने लगेगा। अब इस गाढ़े से दूध में सारे ड्राई फ्रूट्स और केसर वाला दूध ऐड कीजिए। इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाइए। थोड़ी देर बाद मखाना खीर एकदम गाढ़ी और मलाईदार होगी। फिर इसमें शक्कर, इलायची पाउडर और ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर रेसिपी में आप ढेर सारा प्यार ऐड कीजिए। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरेंगी और खाने वाला इसे महसूस करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ। अगर सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में हल्का भूनकर आप इस खीर में डालेंगे तो मखाना खीर और ज्यादा टेस्टी बनेगी। फिर इस मखाना खीर को एक सुंदर से बर्तन में निकालिए, फिर भगवान को इस खीर का भोग लगाइए और लुत्फ उठाइए इस टेस्टी मखाना खीर का।
वैसे ये मखाना खीर अगर आप मिल बांट कर मींस शेयर करके खाएं तो इसका टेस्ट और ज्यादा निखर कर आता है। यकीन ना आए तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे इस मखाना खीर को आप ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। गर्मियों में गर्म खाने की बजाय ठंडा खाना अच्छा लगता है कि नहीं? वैसे आपको खीर के साथ क्या खाना अच्छा लगता है? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं स्वाद का जायका ऑन आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। पेश है खीर की तारीफ में एक छोटी सी कविता। दूध कढ़ाई में जब खोले तब धीमी आंच पर मखाना डोले, मम्मी जब खीर बनाए इलायची की खुशबू छाए, मखाना दूध और

शुगर का मेल, टेस्टी ड्राई फ्रूट से सजता ये खेल। ठंडी ठंडी मीठी मीठी, मन को ललचाए ये खीर रसीली। व्रत त्योहार या मेहमान आए, हर मौके का स्वाद बढ़ाए। इसे खाकर खिला मन का कमल, मखाना खीर से माहौल गया बदल। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। वैसे हमारे भारत देश में खाना खिलाने के लिए हम बहाने ढूंढते ही रहते हैं, है कि नहीं? यहाँ तरह तरह के लोग और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड हमेशा ही मिलता है। हमारे इस स्वाद का जायका शो पर हम आपको इनकी दोबारा से पहचान कराएंगे, बैक टू बेसिक्स, क्योंकि आप हमारे खास दोस्त हैं और दोस्ती पक्की करने के लिए खाना खिलाना एक अच्छा तरीका है। कहते हैं कि रिश्तों के नाम भी अजीब है, आप सिर्फ ऑडियंस ही नहीं अपनों जितने करीबी हैं। इस बात पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार हम और बातें करेंगे।

वेलकम बैक। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। हमारी अगली रेसिपी है पान का मीठा शरबत। वैसे खाना खाने के बाद पान का बीड़ा खाना अच्छा होता है, पान का पत्ता खाना। वैसे इस पान के पत्ते पर सौंफ, गुलकंद, थोड़ी इलायची डालकर आप कभी खाकर देखिए जनाब, कितनी टेस्टी मिठाई खाने की फीलिंग आएगी कि पूछो मत। पान बीड़ा को एक माउथ फ्रेशनर के रूप में खाया जाता है। कहते हैं कि इस पान के पेड़ पर सांप होते हैं, इसलिए पान के पत्तों को खाने से पहले उसका आगे का और पीछे का हिस्सा तोड़ना जरूरी है, क्योंकि सुबह की ओस की बूंदे ड्यू ड्रॉप्स को ये सांप चाटते हैं, तो हो सकता है कि वो पत्ते हमारी सेहत पर बुरा असर डाले। तो इस रिस्क से निपटने के लिए हम पान का आगे का और पीछे का हिस्सा तोड़ते हैं। वैसे ये पान के पेड़ घनी छाया और ठंडक देते हैं। पान के पत्तों को हम पूजा में भी यूज करते हैं। तो आइए हम और आप दोनों मिलकर बनाते हैं पान का शरबत। पान का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। पान के पत्ते मींस बीटल लीफ 2, इसका आगे का और पीछे का थोड़ा सा हिस्सा आप तोड़ दीजिए। वजह तो मैंने बता दी है क्यों। गुलकंद 1 चम्मच, भिगोया हुआ गोंद कतीरा 1 चम्मच, गोंद कतीरा मतलब डिंक, सौंफ 1 चम्मच, भिगोया हुआ सब्जा 1 चम्मच। सौंफ को आप रात भर पानी में भिगो कर रखिए। इसे यूज करते समय इसका पानी हटा दीजिए। सेम विद सब्जा सीड्स, मतलब सब्जा सीड्स को भी रात भर भिगोइए, सुबह उसका एक्स्ट्रा पानी हटाकर सिर्फ फूले हुए सब्जा को आपको यूज करना है। इसके अलावा हमें चाहिए ठंडा दूध 1/2 कप, ठंडा पानी 1/2 कप। अब हम इस टेस्टी शरबत की रेसिपी सुनते हैं। मिक्सर के एक जार में पान के पत्ते, गुलकंद, सौंफ, ठंडा दूध, ठंडा पानी, इन सारी चीजों को अच्छे से घुमाइए। 2 मिनट के बाद लाइट ग्रीन कलर का मस्त शरबत तैयार होगा। फिर इस शरबत को एक सुंदर से सर्विंग ग्लास में निकालिए। उसमें भिगोया हुआ गोंद कतीरा मींस डिंक और सब्जा डालकर चम्मच से मिक्स कीजिए। अब अपने मुखड़े पर एक प्यारी सी स्माइल लाइए। पान के शरबत की छवि को अपने मोबाइल कैमरा में बंद कीजिए, फिर इसका लुफ्त उठाइए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। वैसे ये पान का शरबत आपका शरीर और दिमाग इन दोनों को ठंडक का एहसास दिलाएगा, और ये सब करना गर्मी में बेहद जरूरी है। इस पान शरबत की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है हरियाली शरबत। पान का शरबत देखकर याद आई हरियाली, पान का शरबत देखकर याद आई हरियाली, जैसे बागों की छांव में नाचे नार मतवाली। गर्मी के सीजन में खुद से ही हो रहा युद्ध, तो पियो ग्लास फुल खान पान वाला दूध। इसे पीकर तुम हो जाओ कूल, टेस्ट है इतना प्यारा कि गर्मी को जाओगे भूल। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आपसे बात कर रही हूँ इस शो पर जिसका नाम है स्वाद का जायका। वैसे स्वाद और जायका ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। दे आर फ्रेंड्स। इन दो शब्दों में छोटा सा फर्क है, और वो फर्क ये है कि स्वाद को हम अपनी टंग से मींस अपनी जीभ से टेस्ट करते हैं, जैसे खट्टा, मीठा या नमकीन स्वाद, और जायका हमें उस स्वाद का अरोमा मींस महक यानी खुशबू और टेम्परेचर बताता है। फॉर एग्जाम्पल, शक्कर का स्वाद मीठा होता है, राइट? लेकिन बर्फी का जायका उसमें इस्तेमाल की हुई केसर, इलायची और जायफल जैसी चीजों से पता चलता है। इन शॉर्ट, स्वाद एक घटक है, जबकि जायका एक कंप्लीट खाने का एक्सपीरियंस है ना इंटरेस्टिंग बात। वैसे ये जो शेफ होते हैं उनके हाथों से बना खाना मतलब एक जादू सा लगता है कि नहीं? और उसके आगे घर के खाने को हम ध्यान नहीं दे पाते। वैसे शेफ बनना कोई आसान बात तो है नहीं जनाब। स्वाद के बादशाह, रसोई के सरताज, हर निवाले में जादू, हर रिश्ते में ताज, उलझने दिल को सुलझाए स्वाद के नए रस से। रसोई का कलाकार अपनी कला में प्रवीण, दिल का रिश्ता बनाता है खास अपने हुनर से। इनके हाथों का खाना खाकर
दिल को मिले सुकून, अदब से पूछे हाल हमारा और खाना बनाए जो हुकुम। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछूं? क्या आपके हाथों का जायका आपकी स्माइल से भी अच्छा है क्या? क्या बात! वैसे आपके हाथों का खाना ना सही, लेकिन आपके चेहरे की स्माइल ही मेरे लिए काफी है। कहते हैं कि इफ कुकिंग इज एन आर्ट, तो हर डिश के पीछे एक आर्टिस्ट होता है और हर घर में एक फूड आर्टिस्ट तो होता ही है। बच्चों के टिफिन को रेडी करना, सबका नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, त्योहार स्पेशल खाना, उपवास स्पेशल खाना, बीमार फैमिली मेंबर के लिए अलग सा डाइट फूड, ऐसी अनगिनत टाइप का खाना बनाना कितना मुश्किल है। मुझे तो ये लिस्ट सुनकर अभी से टेंशन हो रही है। इसलिए तो हम खाना खिलाने वाले उस व्यक्ति को अपना ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड दिखा ही सकते हैं। वैसे आप हर रोज किसके हाथों से बना खाना खाते हैं? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो भाई, खाना खाने के बाद करें तो क्या करें? आप चाहे तो खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं, या फिर धीरे धीरे टहल सकते हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमिए फिरिए, कुछ नहीं तो अपने घर में ही 10-12 राउंड लगाइए, फिर देखिए कितना अच्छा फील होता है। आज हम बात करेंगे भारत के फेमस सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर की। शेफ संजीव कपूर का फेमस डायलॉग है, नमक स्वाद अनुसार। इन्होंने भारतीय खाने को इंटरनेशनल पहचान दी है। खान पान क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए शेफ संजीव कपूर को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एशिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कुकरी शो, जिसका नाम था खाना खजाना, इस शो के माध्यम से शेफ संजीव कपूर घर घर में फेमस हुए। इंडियन डेलिकेसीज, उसमें स्पेशली पंजाबी स्टाइल खाने को वो एकदम आसान मेथड से बनाना सिखाते थे। उन्होंने कुकिंग से रिलेटेड किताबें भी लिखी है। उनकी फेमस डिश का नाम है शाम सवेरा डिश। इस रेसिपी को बनाते समय पालक के कोफ्ते के अंदर पनीर भरा होता है और इस पालक पनीर कोफ्ते को टमाटर और काजू की रिच ग्रेवी में परोसा जाता है। वाओ! वैसे नवंबर 2017 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड फूड इंडिया इस शो में शेफ संजीव कपूर ने लगभग 1000 किलो के करीब वजन की खिचड़ी पकाकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। इस खिचड़ी को पकाने के लिए उनके साथ 50 शेफ की एक टीम भी थी। इंडिया गेट न्यू दिल्ली एरिया में ये अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। हमें नाज है ऐसे खान समय पर, जिसने अपने हाथों के जादू से कुकिंग को एक विशेष पहचान दी है। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक टू आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। वैसे गर्मियाँ तो बढ़ती ही जा रही है, रुकने का तो नाम ही नहीं। और ऐसे में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात ये है कि आप पानी पीते रहिए। प्यास लगेगी तब पानी पिया जाएगा, ऐसे मत सोचिए। हर एक दो घंटे बाद पानी पीते रहना अच्छी आदत है। वैसे घर का बना ताजा खाना हमें थ्रू आउट द ईयर खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन इस गर्मी वाले सीजन में होममेड ताजा खाना हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। गर्मियों में डीप फ्राइड, स्पाइसी और फास्ट फूड से आप जरा दूर ही रहिए। चाय, कॉफी और बहुत ज्यादा मीठी चीजों से आप बचे। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस, बाप रे बाप, फिर क्या खाना चाहिए? आप ककड़ी और दही का रायता खाइए। वाटरमेलन, मस्कमेलन का सेवन हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। मैंगोस को एक घंटे के लिए ठंडे पानी में डुबाकर रखिए। ऐसा करने से उसकी हीट थोड़ी कम होगी, फिर आप उसे भी खा सकते हैं। नींबू पानी, गन्ने का रस और कोकम शरबत पीने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। रूम टेम्परेचर वाली लस्सी या फिर छाछ हमारे पेट को शांत रखती है। आम पना मीन्स कैरी का शरबत हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे समर सीजन में कुछ लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, राइट? भाई ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं है? बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सभी आइसक्रीम प्रेमी होते हैं। लेकिन क्या आइसक्रीम सचमुच हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाती है? क्या आप जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में जब विंटर सीजन होता है तब वहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? जब बर्फ गिर रही हो और उन्हें अपनी बॉडी को गर्म रखना हो तब वो लोग खाते हैं आइसक्रीम। जी हाँ, ठीक सुना आपने। फॉरेन कंट्रीज में जब हैवी स्नोफॉल होता है तब वहाँ के लोग आइसक्रीम खाने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, क्योंकि आइसक्रीम की तासीर गर्म होती है। आइसक्रीम जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तब उसे पचाने के लिए बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है और इस प्रोसीजर में हीट जनरेट होती है। इसीलिए तो आइसक्रीम खाने के थोड़ी देर बाद हमें जोरदार प्यास लगती है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। बाय द वे, व्हाट इज योर हेल्थ मंत्रा टू बीट द हीट? वैसे फ्रिज का ठंडा खाना हमारी सेहत पर कुछ अच्छा असर नहीं करता। इट इज क्वाइट अनहेल्दी ऑप्शन। फ्रिज के खाने को आप रूम टेम्परेचर पर लाकर खाएं तो थोड़ा ठीक है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि गर्मी के सीजन में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, क्योंकि सनराइज जल्दी होता है और सनसेट थोड़ी देर से होता है। तो क्यों ना हम भी सुबह जल्दी उठकर अच्छा सा और हेल्दी सा जायकेदार नाश्ता करें। अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी हो तो दिन भर एनर्जी महसूस होती है। Am I right? वैसे इस साल 21 जून 2016 को ग्रीष्म संक्रांति है, वर्ष का सबसे लंबा दिन और छोटी रात। तो आप इस खास दिन को क्या खाकर सेलिब्रेट करना पसंद करेंगे? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में जून के महीने में मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है? जी हाँ, मैं आम्र महोत्सव की बात कर रही हूँ। इस फेस्टिवल में आप जरूर जाइए। फलों के राजा की विविधता का जश्न आप दिल खोल कर मनाइए। इस आम्र महोत्सव में 100 से ज्यादा वैरायटीज के मैंगोज का एग्जीबिशन होता ही है। साथ ही आम से बने अनेक व्यंजनों का लुत्फ आप आराम से उठा सकते हैं। मोस्टली दिल्ली, लखनऊ, पटना और रायपुर में मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अल्फोंसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा जैसी फेमस वैरायटीज के अलावा कुछ रेयर वैरायटीज को भी मैंगो फेस्टिवल में एग्जिबिट किया जाता है। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे हमारे देश में मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन मीन्स आम खाने की प्रतियोगिता भी काफी फेमस है। वैसे बिहार के मधुबनी में आयोजित मैंगो फेस्टिवल में मुकुल मिश्रा नाम के व्यक्ति ने 5 मिनट में 32 आम खाकर रिकॉर्ड क्रिएट किया था। मिथिला मैंगो फेस्टिवल में एक हाथ से आम खाने का वीडियो काफी वायरल हुआ था।
वैसे गर्मी के सीजन में आप एक या दो आम हर रोज खा ही सकते हैं। विटामिन सी से भरा ये आम फल हमारी स्किन और इम्यूनिटी के लिए बेनिफिशियल है। वैसे 24 घंटे सिर्फ आम खाने का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, लेकिन एक प्रिकॉशन आप जरूर लीजिए। आम को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज आपकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है। आम का मुरब्बा, आम का अचार, आम पापड़ या कुछ और, आपको आम से बनी कौन सी रेसिपी खास लगती है? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। इस आम की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है आम। मुझे बहुत भाते हैं नानी मीठे मीठे आम, भर डालिया तो मुझे भी खिला दे, लूंगा तेरा नाम। बहुत बड़ी है बगिया तेरी, छोटा मेरा पेट, और पेट से भी छोटा है मेरे मुंह का गेट। घबरा मत, खा पाऊ में बगिया भर के आम, न दे टॉफी न दे बिस्किट, दे बस केवल आम। आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम, सिर्फ एक दिन कर दे इस बगिया मेरे नाम। इस प्यारी सी कविता के कवि है श्री शिवचरण चौधरी जी। भाई, हमारे खास ऑडियंस से आज हमने आम बातें तो कर ली। आपको हमारा आज का शो कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हो तो हमें जरूर बताइए। और अगर आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो वो भी बताइए। हमारे देश की और विदेशों की रेसिपीज को सुनने के लिए, उनसे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों को एंजॉय करने के लिए स्वाद का जायका जरूर सुनिए एवरी मंडे एट 1 PM एंड एवरी फ्राइडे एट 4 PM। हमने आपके साथ अपॉइंटमेंट रखी है। आप इस शो में शामिल होकर स्वाद का जायका सुनिए और कुछ मनपसंद गीत भी गुनगुनाइए। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा। सिर्फ वादा नहीं बल्कि पक्का वादा, हम आपसे दोबारा मिलने जरूर आएंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

मैं सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। खाना खाते वक्त सलाद, पापड़, अचार, नमकीन सब हो, लेकिन आचार्य 90 FM ना हो तो खाना कुछ अधूरा सा लगता है। वैसे हर उलझन रास्ता नहीं रोकती, कुछ उलझने रास्ता दिखाने आती है और कुछ उलझने जिंदगी को आसान बनाने आती है। कुकिंग करते समय अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हार मत मानिए। कई बार नाकाम कोशिश भी किसी न्यू रेसिपी का इन्वेंशन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड्डू बनाते समय उसका मिश्रण कुछ ज्यादा ही पतला हो गया हो और लड्डू गोल के बदले चपटे आकार ले रहे हो तो मैं सीधे उसकी बर्फी ही बना देती हूँ। एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगाकर लड्डू के पतले मिश्रण को फैलाओ, फिर 2 घंटे तक उसे फ्रिज में रखो, उसे बाहर निकालो, फिर बारीक कटे ड्राई फ्रूट से उसे डेकोरेट करो, बाद में छुरी से उसे स्क्वायर शेप में काटो। दिखने में भी सुंदर और टेस्ट में भी अति सुंदर। जुगाड़ कीजिए और बिगड़े काम सुधारिए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे हमारे शब्द वेदनाओं को कभी उजागर कर ही नहीं सकते। सिर्फ चुप रहना ही है जो बिना कुछ कहे दर्द जाहिर करने में माहिर है। एक बार दिवाली के त्योहार पर मैं लड्डू बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड्डू बन ही नहीं रहे थे। तब मैंने भी मौन व्रत धारण किया था, क्योंकि मेरी मम्मी भी मौन रहकर सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से बहुत कुछ कह रही थी। वैसे समझने वाले समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उन फैले हुए लड्डुओं को सीधे डेकोरेट करना ही शुरू कर दिया। उन पर मुनक्का रखकर 2 आंखें बनाई, फिर काजू से एक स्माइल बनाई, केसर के डंठल से दोनों गालों पर मूछें बनाई और तैयार हो गए हंसते हुए शानदार लड्डू। वैसे इस जुगाड़ को देखकर सब खुश। कहते हैं कि जिंदगी के हसीन पल तब हमारे सामने आते हैं जब हम हमारी जिंदगी को शांत और आसान बनाते हैं, और चुप रहने पर बहुत कुछ सुनाई देता है और दिखाई भी देता है। समझदार को इशारा ही काफी है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और इस शो का नाम है स्वाद का जायका। किसी ने क्या खूब कहा है कि पेपर पे लिखे हुए लेसन्स बहुत आसानी से पढ़े जाते हैं, लेकिन जिंदगी के लेसन्स खुद जीने पड़ते हैं, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस को शब्दों में बांधना पॉसिबल नहीं है। जो लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं उन्हें कुछ भी खोने का डर नहीं होता। अपने फ्यूचर को आप अगर ब्राइट बनाना चाहते हो तो अपना दृष्टिकोण पहले बदलिए, क्योंकि दृष्टि का इलाज हो सकता है, लेकिन दृष्टिकोण बदलने के लिए अच्छे विचार जरूरी है। शालीनता किसी पर थोपी नहीं जा सकती, क्योंकि उसे हमारे मन से ही उजागर करना पड़ता है, और एक बार हमारे मन ने ठान लिया तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है, क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन में भी जो खुद पर यकीन रखता है वही सक्सेसफुल होता है। छोटी सी बातों में जीवन को समझने की गहराइयां हैं, इसीलिए अपने दिल को भरिए उम्मीदों से, अपने दिमाग में रखिए सकारात्मकता और मन में सुनहरे कल के सपने। जैसे आचार्य 90 FM के ऑडियंस हैं हमारे अपने। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो।

जिस इंसान ने खुद के जख्मों को खुद ही ठीक किया है, उस इंसान को दुनिया का कोई भी दुख हरा नहीं सकता। ऐसे लोग एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं। इसीलिए कर्म करते रहो, लोग हाथ से छीन सकते हैं, नसीब से नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने ठीक कहा है, आपके पास जीवन बदलने की शक्ति है तो इस काम की शुरुआत विचार बदलने से करें। भाई हमें अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छा ही करना है, क्योंकि सब कुछ हमारे ही पास लौट कर आता है। वैसे भी जो तुम्हें यहाँ तक ले आया है वही आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाएगा। इसीलिए अगर अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो हर बात पर रिएक्शन देना पहले बंद कर दो। अगर हम ऐसे सोच सकते हैं कि किसी बात का कितना बुरा असर होगा, तो ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि अच्छा भी तो हो सकता है। तभी तो जवाब ना देना भी एक तरह का जवाब ही है। जनाब, किचन के काम में फेल होना मतलब किचन में नो एंट्री, ऐसे मत सोचिए। फेल होना मतलब एक और चांस होता है, फिर से पुराने एक्सपीरियंस और नए जोश के साथ कोशिश करने का चांस। हार कर गिरना बुरा नहीं होता, लेकिन गिर कर दोबारा ना उठना और नई कोशिश छोड़ देना, ये हमारी सबसे बड़ी हार है। हर मिस्टेक हमें कुछ सिखाती है, सिर्फ उस मिस्टेक से सीखने की इच्छा होनी चाहिए। कहते हैं कि जिसने कभी गलती की ही नहीं, उसने कभी कोशिश ही नहीं की और ना ही कुछ नया सीखने का सोचा। इसलिए चाहे किचन हो या जिंदगी, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड।

आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। हार होने से स्टोरी खत्म नहीं होती, ये तो नए अध्याय की शुरुआत होती है। वो कहते हैं ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। वैसे ऊपर वाले ने पहले से ही सबकी स्टोरी लिखी है, इसीलिए तो भगवान पर भरोसा रखिए। तो क्या हुआ कि कुछ रास्ते मुश्किलों से भरे हैं, कुछ रास्ते बहुत स्लो हैं। अगर भगवान हमारी कोशिश का जवाब देने में टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि जिसने आपके जीवन की स्टोरी लिखी है ना, उसे उसका अंतिम रिजल्ट भी पता ही है। इसलिए भरोसा रखिए अपनी कोशिश पर और ऊपर वाले के प्लान पर। वैसे इम्पॉसिबल इस वर्ड को हम आई एम पॉसिबल भी पढ़ सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ अपना नजरिया बदलने की। अच्छी सोच एक रोशनी की तरह होती है, जो अंधेरे में भी हमें उम्मीद की राह दिखाती है। इसलिए इम्पॉसिबल शब्द को अपने मन के डिक्शनरी से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। अगर आपने ऐसे किया तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। और इस विचारधारा को अपनाकर हमें विकसित भारत का सुनहरा सपना सारे फूल बाग में लगाए नहीं जाते, सब लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, कई तो पास होकर भी याद नहीं आते, कुछ दूर होकर भी भुलाए नहीं जाते। स्वाद का जायका इस शो पर आज के लिए बस इतना ही। हम दोबारा मिलेंगे। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से हमारे प्यारे ऑडियंस को मेरा कमिंग सून वाला बाय बाय। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिलों को छू कर आपको उस दौर में लेके जाएगी जिसके शायद आपने कल्पना नहीं की होगी। हम हमेशा इतिहास में पढ़ते हैं हिस्ट्री

में पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्रांतिकारियों ने अपनी जिंदगी की आहुति दी थी, शहीद हुए थे हमारे देश को आजाद करने के लिए। सोचिए दोस्तों, उस समय जब टेलीफोन नहीं हुआ करता था, जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, जब कम्युनिकेशंस के कोई माध्यम नहीं थे, उस समय प्यार कैसे पनपता होगा, प्यार कैसे होता होगा, नजरें कैसी मिलती होंगी, इजहार कैसे होता होगा। सालों सालों, महीनों महीनों, हफ्ते हफ्ते, जब दो लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते होंगे। हाँ, उसी दौर की कहानी मैं लेके आया हूं आज, एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत सारे फीलिंग्स, इमोशंस, देश के प्रति समर्पण और देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल है ये कहानी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की कहानी का पहला भाग। जब आजादी एक ख्वाब थी। साल था 1930। हिंदुस्तान की हवा में अजब सी खामोशी थी। शहरों में अंग्रेजी हुकूमत का दबदबा था। उनकी पुलिस घोड़ों पर बैठे सड़कों पर घूमती थी। उनके झंडे सरकारी इमारतों पर लहराते थे और उनके कानून आम लोगों के सर पर तलवार की तरह लटकते थे। लेकिन इसी खामोशी के नीचे कुछ और भी था, एक हल्की सी चिंगारी, एक जज्बा और एक लफ्ज जो धीरे धीरे धीरे धीरे हर बाजार और हर गांव की हवा में घूमने लगा था। और वो लफ्ज कुछ और नहीं था आजादी। आजादी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, आजादी ब्रिटिश सोल्जर से, आजादी ब्रिटिश पुलिस से, यानी कि आजादी इस ब्रिटिश हुकूमत से जो हमारे ऊपर न जाने कितने सालों से हुकूमत कर रही थी। लोग खुलकर तो नहीं बोलते थे, पर रात को चूल्हे बुझ जाते थे और अंधेरा गांव को अपनी बाहों में ले लेता, तब लोग धीरे धीरे बात करते थे। कब तक अंग्रेजों का राज चलेगा? कब मिलेगी हमें आजादी? इसी वक्त उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बारागांव में एक नौजवान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला था। उसका नाम था अर्जुन मिश्रा। उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन उसकी आंखों में एक अजब सा जुनून था, जैसे उसने दुनिया को सिर्फ देखा ही नहीं, महसूस भी किया हो। अर्जुन के पिता गांव के स्कूल में अध्यापक थे। बहुत सीधे और ईमानदार आदमी थे। उनका मानना था, इल्म सबसे बड़ा हथियार होता है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार, बिगैर शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन बचपन से ही पढ़ने में तेज था, इसीलिए उसे इलाहाबाद भेजा गया। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद से पूरी की। इलाहाबाद ने उसकी दुनिया ही बदल दी। वहां उसने पहली बार देखा था लोगों को सड़कों पर मार्च करते हुए, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। उसने देखा था पुलिस को लाठी चार्ज करते हुए, उसने देखा था लोगों को गिरते हुए, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि गिरने के बाद भी लोग उठ जाते थे और फिर से नारे लगाते थे। उस दिन अर्जुन के अंदर कुछ जाग गया था, एक सवाल, अगर इतने लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं तो मैं क्यों चुप रहूं? एक शाम सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी और लाल रंग से भर गया था। अर्जुन अपने घर के आंगन में खड़ा था। अर्जुन की माँ चूल्हे के पास बैठी थी, उनकी आंखों में डर था। सच में जा रहे हो? अर्जुन की माँ ने धीरे से अर्जुन से पूछा। अर्जुन उनके पास बैठा। माँ, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? माँ ने उसके चेहरा पकड़कर देखा, जैसे उस पल को याद में बसाना चाहती हो। तभी अर्जुन के पिता आंगन में आए। उन्होंने अर्जुन को कुछ पल देखा, फिर बोले, बेटा, आजादी की राह आसान नहीं होती। इसमें जेल है, दर्द है और कभी-कभी मौत भी।
अर्जुन ने सीधी आंखों से उनकी तरफ देखा। पर गुलामी में जीना भी तो जिंदा रहना नहीं होता ना पापा, हम कितने सालों तक इस अंग्रेजी हुकूमत के बोझ के तले दबे रहेंगे और कितने सालों तक ये अंग्रेजी हुकूमत हमें दबाएगी और कितने सालों तक ये अंग्रेजी हुकूमत हमसे हमारा हक छीनती रहेगी और कितने सालों तक ये अंग्रेजी हुकूमत हमें कीड़े मकोड़ों की तरह मारती रहेगी। कुछ पल की खामोशी हुई, फिर पिता ने धीरे से कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, सच्चाई और इंसानियत कभी मत छोड़ना। अर्जुन ने अपने माता पिता के पैर छुए और उस रात वो घर छोड़कर निकल पड़ा आजादी के सफर पर। कुछ महीनों बाद अर्जुन एक क्रांतिकारी दल का हिस्सा बन चुका था। उनके लीडर थे राघव बाबू। उनकी आवाज में बिजली थी, उनके लफ्जों में आग। वो गांव गांव जाते, लोगों को जगाते, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते। अर्जुन और उसके साथी अक्सर रात में सफर करते, दिन में छुप कर रहते। कभी मंदिर के आंगन में मीटिंग होती, कभी किसी खेत के कोने में, कभी किसी स्कूल के छोटे से कमरे में। हर वक्त एक डर साथ रहता था, ब्रिटिश पुलिस का डर। पर उस डर से बढ़कर एक सपना था, आजादी का सपना। एक दिन उनका जत्था पहुंचा नंदपुर गांव। गांव शांत था, कच्चे घर थे, बच्चे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास खेलते थे और थोड़ी आगे जाकर एक छोटा सा तालाब था। शाम ढल रही थी, आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। अर्जुन गांव वालों को मीटिंग के लिए बुला रहा था। तभी उसकी नजर तालाब की तरफ गई। वहां एक लड़की पानी भर रही थी, सफेद और नीली ओढ़नी, हाथ में मिट्टी का मटका, बालों की एक लट उसके चेहरे पर आ रही थी। उसने एक पल के लिए अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। वक्त जैसे एक पल के लिए रुक गया, फिर लड़की ने नजर झुका ली और वो वहां से चली गई। अर्जुन उसे देखता ही रह गया। उस रात जब सब सो गए थे, अर्जुन की आंखों के सामने वही चेहरा, वही लड़की जो तालाब के पास थी, वही उसकी आंखों में घूम रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, कौन थी वो लड़की?

ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे अर्जुन की कहानी। अर्जुन नंदपुर गांव में जब एक मूवमेंट के लिए जाता है तब वो वहां पे टकराता है तालाब पे एक लड़की से, और फिर पूरी रात वो उसी के ही ख्वाबों ख्यालों में खोया हुआ रहता है, और वो यही सोच में गुम होता है कि आखिर कौन थी वो लड़की। आप सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। अगली सुबह अर्जुन स्कूल के बाहर पैम्फलेट बांट रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, ये सब बांटने से क्या होगा? अर्जुन पलट कर देखता है, वही लड़की तालाब वाली। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, शायद सब कुछ तो नहीं बदलेगा पर शुरुआत तो होगी। लड़की ने उसे ध्यान से देखा। बाबू, अंग्रेजों से लड़ना आसान नहीं है। वेलकम बैक दोस्तों, अर्जुन ने कहा। आज़ादी भी आसानी से नहीं आएगी और आज़ादी आसानी से नहीं मिलेगी। दोनों चुप रहे। हवा बरगद के पत्तों को हिला रही थी। फिर लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम लीला है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, अर्जुन मिश्रा। बस इतनी सी मुलाकात, लेकिन कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां ऐसे ही छोटी सी मुलाकात से शुरू होती है। 2 दिन बाद अर्जुन और उसका जत्था गांव छोड़ने वाला था। सुबह अर्जुन अपना झोला बांध रहा था, उसे एक फोल्डेड कागज मिला। उसने खोला, अंदर लिखा था, आपने कहा था आज़ादी आसान नहीं होती। शायद सही कहा था, पर क्या किसी का इंतजार आसान होता है? लीला। ये खत लीला ने अर्जुन के लिए लिखा था। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत जवाब लिखा, इंतजार मुश्किल होता है पर अगर वजह खूबसूरत हो तो इंतजार भी दुआ बन जाता है। उसने चिट्ठी बरगद के नीचे रख दी और उस दिन से शुरू हुआ चिट्ठियों का सफर। दो दिल, दो लोग और बीच में सिर्फ कागज और लफ्ज। हर हफ्ते अर्जुन किसी ना किसी बहाने नंदपुर के पास आता और एक चिट्ठी छोड़ जाता। लीला भी जवाब रख जाती, कभी शायरियों में, कभी सवाल में, कभी एक छोटी सी कहानी, और धीरे धीरे उन लफ्ज़ों में मोहब्बत घुलने लगी थी। लेकिन वक्त उनके लिए एक और कहानी लेकर आता। एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत और कुर्बानी एक ही रास्ते पर चलने वाली थी, और उन दोनों को अभी तक पता भी नहीं था कि एक दिन वो बरगद का पेड़ उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा गवाह बनने वाला है, और उसके नीचे लिखी गई एक चिट्ठी कभी लौट कर नहीं आएगी। लफ्जों में पलती मोहब्बत नंदपुर के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अब सिर्फ हवा नहीं चलती थी, वहां लफ्ज रुकते थे, चिट्ठियां रुकती थी, और दो दिल अपनी बातें कागज पर उतारते थे। अर्जुन और लीला ने कभी ज्यादा मुलाकात नहीं की पर उनकी चिट्ठियां उनकी खामोशी से ज्यादा बोलती थी। हर हफ्ते अर्जुन किसी ना किसी बहाने नंदपुर में आ रहा था, कभी किसी मीटिंग के नाम पर, कभी किसी गांव में जागरूकता अभियान के लिए, और हर बार
बरगद के पेड़ के नीचे एक चिट्ठी छोड़ जाता। लीला भी वहां आती और उसका जवाब रख जाती। उन्होंने एक दूसरे के बारे में सब कुछ लिखना शुरू कर दिया, अपने बचपन की बातें, अपने सपने, अपने डर। एक बार लीला ने लिखा, अर्जुन कभी कभी मुझे लगता है तुम पागल हो। जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उसमें जान भी जा सकती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कुछ दिन बाद जवाब आया, लीला डर तो लगता है पर गुलामी से ज़्यादा नहीं, और जब भी डर लगता है मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ लेता हूँ, फिर हिम्मत वापस आ जाती है। लीला ने वो चिट्ठी अपने तकिए के नीचे रख ली। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसके दिल में एक नया एहसास जन्म ले रहा था, एक एहसास जिसने शायद वो खुद एक एहसास जिसे शायद वो खुद भी नाम नहीं दे पा रही थी। समय बीतता गया, महीने बीत गए। अर्जुन और उसके साथी अब और भी ज़्यादा सक्रिय हो गए थे। ब्रिटिश पुलिस अब क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए हर जगह तलाशी ले रही थी। कई लोग गिरफ्तार हो गए थे, कई लोगों को जेल में डाल दिया गया था। एक रात अर्जुन ने अपनी चिट्ठी में लिखा, लीला अगर मेरी कभी चिट्ठी आनी बंद हो गई तो समझ जाना कि मैं किसी मुश्किल में हूँ, पर एक बात याद रखना, तुमसे मिलना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और खूबसूरत गलती थी, क्योंकि अब मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। लीला ने जब ये पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया वो सिर्फ अर्जुन का इंतज़ार नहीं करती, वो अर्जुन से मोहब्बत करती है। लेकिन उसने कभी ये बात लिखी नहीं, शायद डर था, शायद वक्त का इंतज़ार। एक शाम लीला तालाब के पास बैठी थी, हवा में ठंडी सी खुशबू थी, आसमान धीरे धीरे नीले से काला हो रहा था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया, अर्जुन मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, पर शायद मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही हूँ। अगर तुम अगले हफ्ते नंदपुर आ सको तो शाम को तालाब के पास मिलना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, लीला। उसने चिट्ठी फोल्ड की और बरगद के नीचे रख दी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था जैसे कोई फैसला हो गया।

एक हफ्ता बीत गया था, वो दिन आ गया। शाम ढल रही थी, तालाब के पास हवा हल्की हल्की चल रही थी, पानी में सूरज की आखिरी रोशनी चमक रही थी। लीला वहां खड़ी थी, उसने वही नीली ओढ़नी पहनी थी जो अर्जुन ने पहली बार देखी थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, हर आवाज पर उसे लगता अर्जुन आ रहा है। कभी पेड़ों के पत्तों की आवाज होती, कभी किसी कदमों की, पर जब भी वो मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। सूरज ढल गया, गांव शाम की ओर ढल रहा था, तालाब का पानी भी अब काला सा लगने लगा था, पर अर्जुन अर्जुन नहीं आया। लीला ने सोचा, शायद देर हो गई है, वो कल आएगा। अगले दिन लीला फिर बरगद के पेड़ के पास गई। कोई चिट्ठी नहीं थी, कोई संदेशा नहीं था, कोई शब्द नहीं थे, कोई लफ्ज नहीं थे, बस इंतजार। अगले दिन भी कुछ नहीं आया। एक दिन गुजरा, 2 दिन बीत गए, 3 दिन निकल गए, फिर पूरा एक हफ्ता बीत गया। ना अर्जुन आया, ना उसकी कोई चिट्ठी। लीला का दिल बेचैन होने लगा। उसने हर दिन तालाब के पास जाकर इंतजार किया, हर दिन बरगद के पेड़ को देखा, पर वहां सिर्फ हवा होती थी और खामोशी। एक दिन वो हुआ जिसकी लीला ने कभी कल्पना नहीं की थी। गांव में खबर फैल गई, लोग छुपके छुपके बातें कर रहे थे। ब्रिटिश पुलिस ने पास के जंगल में कुछ क्रांतिकारियों को घेर लिया था, गोलियां चली थी, कई लोग मारे गए थे। उनमें से एक नाम था अर्जुन मिश्रा। लीला को जब ये खबर मिली, उसके हाथ से मटका गिर गया। उसे लगा ये झूठ है, ये गलत खबर है, अर्जुन के साथ ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। पर कुछ दिन बाद राघव बाबू गांव आए। उन्होंने सबको बताया कि अर्जुन कितना बहादुर था, उसने अंतिम पल तक हार नहीं मानी, उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। लीला चुप खड़ी थी वहां, उसने सब कुछ सुना, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। उस रात लीला अकेली बरगद के पेड़ के पास गई। हवा थोड़ी तेज चली, पत्ते हिलने लगे, जैसे पेड़ खुद कोई कहानी सुनाने वाला था। तभी उसकी नजर मिट्टी में दबे एक पुराने कागज पर पड़ी। उसने उसे निकाला, कागज पुराना था, पर लिखावट पहचान में आ रही थी। वो लिखावट अर्जुन की थी। लीला के हाथ कांप गए। उसने धीरे से चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था, लीला अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं वापस ना आ पाऊँ। ब्रिटिश पुलिस हमारे पीछे है और हो सकता है मैं बच ना पाऊँ, पर एक बात कहनी थी। आज़ादी मेरी जिम्मेदारी थी और तुम मेरी खुशी। मुझे अफसोस सिर्फ एक बात का रहेगा कि मैं तुमसे वो बात सामने खड़े होकर नहीं कह पाया जो मैं तुमसे इस चिट्ठी में कह रहा हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बेपनाह मोहब्बत करता हूं हमेशा से, और इस बार नहीं, शायद मरने के बाद भी मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा।
लीला की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया। तालाब के पास हवा चल रही थी, बरगद के पत्ते सर सर कर रहे थे, और कहीं दूर जैसे वक्त खुद कह रहा हो, कुछ कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी अमर हो जाती है, क्योंकि कुछ मोहब्बत है और कुछ कुर्बानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, बस कहानी बन जाती है। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने सुनी आज की कहानी जो थी प्री इंडिपेंडेंस एरा की, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और मिलेंगे हम फिर से अगले हफ्ते एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिलों को छूकर आपको उस दौर में लेके जाएगी जिसके शायद आपने कल्पना नहीं की होगी। हम हमेशा इतिहास में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्रांतिकारियों ने अपनी जिंदगी की आहुति दी थी, शहीद हुए थे हमारे देश को आजाद करने के लिए। सोचिए दोस्तों, उस समय जब टेलीफोन नहीं हुआ करता था, जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, जब कम्युनिकेशंस के कोई माध्यम नहीं थे, उस समय प्यार कैसे पनपता होगा, प्यार कैसे होता होगा, नजरें कैसी मिलती होंगी, इजहार कैसे होता होगा। सालों सालों, महीनों महीनों, हफ्ते हफ्ते, जब दो लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते होंगे। हाँ, उसी दौर की कहानी मैं लेके आया हूं आज, एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत सारे फीलिंग्स, इमोशंस, देश के प्रति समर्पण और देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल है ये कहानी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की कहानी का पहला भाग। जब आजादी एक ख्वाब थी। साल था 1930। हिंदुस्तान की हवा में अजब सी खामोशी थी। शहरों में अंग्रेजी हुकूमत का दबदबा था। उनकी पुलिस घोड़ों पर बैठे सड़कों पर घूमती थी। उनके झंडे सरकारी इमारतों पर लहराते थे और उनके कानून आम लोगों के सर पर तलवार की तरह लटकते थे। लेकिन इसी खामोशी के नीचे कुछ और भी था, एक हल्की सी चिंगारी, एक जज्बा और एक लफ्ज जो धीरे धीरे धीरे धीरे हर बाजार और हर गांव की हवा में घूमने लगा था। और वो लफ्ज कुछ और नहीं था, था आजादी। आजादी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, आजादी ब्रिटिश सोल्जर से, आजादी ब्रिटिश पुलिस से, यानी कि आजादी इस ब्रिटिश हुकूमत से जो हमारे ऊपर न जाने कितने सालों से हुकूमत कर रही थी। लोग खुलकर तो नहीं बोलते थे, पर रात को चूल्हे बुझ जाते थे और अंधेरा गांव को अपनी बाहों में ले लेता, तब लोग धीरे धीरे बात करते थे। कब तक अंग्रेजों का राज चलेगा, कब मिलेगी हमें आजादी। इसी वक्त उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बारागांव में एक नौजवान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला था। उसका नाम था अर्जुन मिश्रा। उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन उसकी आंखों में एक अजब सा जुनून था, जैसे उसने दुनिया को सिर्फ देखा ही नहीं, महसूस भी किया हो। अर्जुन के पिता गांव के स्कूल में अध्यापक थे। बहुत सीधे और ईमानदार आदमी थे। उनका मानना था, इल्म सबसे बड़ा हथियार होता है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार, बिगर शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन बचपन से ही पढ़ने में तेज था, इसलिए उसे इलाहाबाद भेजा गया। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद से पूरी की। इलाहाबाद ने उसकी दुनिया ही बदल दी। वहां उसने पहली बार देखा था लोगों को सड़कों पर मार्च करते हुए, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। उसने देखा था पुलिस को लाठी चार्ज करते हुए, उसने देखा था लोगों को गिरते हुए, लेकिन सबसे अजीब बात

ये थी कि गिरने के बाद भी लोग उठ जाते थे और फिर से नारे लगाते थे। उस दिन अर्जुन के अंदर कुछ जाग गया था, एक सवाल। अगर इतने लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं तो मैं क्यों चुप रहूं? एक शाम सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी और लाल रंग से भर गया था। अर्जुन अपने घर के आंगन में खड़ा था। अर्जुन की मां चूल्हे के पास बैठी थी, उनकी आंखों में डर था। सच में जा रहे हो? अर्जुन की मां ने धीरे से अर्जुन से पूछा। अर्जुन उनके पास बैठा। मां, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? मां ने उसके चेहरा पकड़कर देखा, जैसे उस पल को याद में बसाना चाहती हो। तभी अर्जुन के पिता आंगन में आए। उन्होंने अर्जुन को कुछ पल देखा, फिर बोले, बेटा, आजादी की राह आसान नहीं होती। इसमें जेल है, दर्द है और कभी कभी मौत भी। अर्जुन ने सीधी आंखों से उनकी तरफ देखा। पर गुलामी में जीना भी तो जिंदा रहना नहीं होता ना पापा? हम कितने सालों तक इस अंग्रेजी हुकूमत के बोझ के तले दबे रहेंगे और कितने सालों तक ये अंग्रेजी हुकूमत हमें दबाएगी और कितने सालों तक ये अंग्रेजी हुकूमत हमसे हमारा हक छीनती रहेगी और कितने सालों तक ये अंग्रेजी हुकूमत हमें कीड़े मकोड़ों की तरह मारती रहेगी। कुछ पल की खामोशी हुई, फिर पिता ने धीरे से कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, सच्चाई और इंसानियत कभी मत छोड़ना। अर्जुन ने अपने माता पिता के पैर छुए और उस रात वो घर छोड़कर निकल पड़ा आजादी के सफर पर। कुछ महीनों बाद अर्जुन एक क्रांतिकारी दल का हिस्सा बन चुका था। उनके लीडर थे राघव बाबू। उनकी आवाज में बिजली थी, उनके लफ्जों में आग। वो गांव गांव जाते, लोगों को जगाते, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते। अर्जुन और उसके साथी अक्सर रात में सफर करते, दिन में छुप कर रहते। कभी मंदिर के आंगन में मीटिंग होती, कभी किसी खेत के कोने में, कभी किसी स्कूल के छोटे से कमरे में। हर वक्त एक डर साथ रहता था, ब्रिटिश पुलिस का डर। पर उस डर से बढ़कर एक सपना था, आजादी का सपना। एक दिन उनका जत्था पहुंचा नंदपुर गांव। गांव शांत था, कच्चे घर थे, बच्चे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास खेलते थे और थोड़ी आगे जाकर एक छोटा सा तालाब था। शाम ढल रही थी, आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। अर्जुन गांव वालों को मीटिंग के लिए बुला रहा था। तभी उसकी नजर तालाब की तरफ गई। वहां एक लड़की पानी भर रही थी, सफेद और नीली ओढ़नी, हाथ में मिट्टी का मटका, बालों की एक लेट उसके चेहरे पर आ रही थी। उसने एक पल के लिए अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। वक्त जैसे एक पल के लिए रुक गया, फिर लड़की ने नजर झुका ली और वो वहां से चली गई। अर्जुन उसे देखता ही रह गया। उस रात जब सब सो गए थे, अर्जुन की आंखों के सामने वही चेहरा, वही लड़की जो तालाब के पास थी, वही उसकी आंखों में घूम रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, कौन थी वो लड़की?

नहीं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे अर्जुन की कहानी। अर्जुन नंदपुर गांव में जब एक मोमेंट के लिए जाता है तब वो वहां पे टकराता है तालाब पे एक लड़की से और फिर पूरी रात वो उसी के ही ख्वाबों ख्यालों में खोया हुआ रहता है और वो यही सोच में गुम होता है कि आखिर कौन थी वो लड़की। आप सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। अगली सुबह अर्जुन स्कूल के बाहर पैम्फलेट बांट रहा था तभी पीछे से आवाज आई। ये सब बांटने से क्या होगा? अर्जुन पलट कर देखता है, वही लड़की तालाब वाली। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, शायद सब कुछ तो नहीं बदलेगा पर शुरुआत तो होगी। लड़की ने उसे ध्यान से देखा। बाबू, अंग्रेजों से लड़ना आसान नहीं है। वेलकम बैक दोस्तों, अर्जुन ने कहा। आज़ादी भी आसानी से नहीं आएगी और आज़ादी आसानी से नहीं मिलेगी। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा बरगद के पत्तों को हिला रही थी। फिर लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम लीला है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, अर्जुन मिश्रा। बस इतनी सी मुलाकात, लेकिन कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां ऐसे ही छोटी सी मुलाकात से शुरू होती है। 2 दिन बाद अर्जुन और उसका जत्था गांव छोड़ने वाला था। सुबह अर्जुन अपना झोला बांध रहा था, उसे एक फोल्डेड कागज मिला। उसने खोला, अंदर लिखा था, आपने कहा था आज़ादी आसान नहीं होती। शायद सही कहा था, पर क्या किसी का इंतज़ार आसान होता है? लीला। ये खत लीला ने अर्जुन के लिए लिखा था। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत जवाब लिखा, इंतज़ार मुश्किल होता है पर अगर वजह खूबसूरत हो तो इंतज़ार भी दुआ बन जाता है। अर्जुन। उसने चिट्ठी बरगद के नीचे रख दी और उस दिन से शुरू हुआ चिट्ठियों का सफर। 2 दिल, 2 लोग और बीच में सिर्फ कागज और लफ्ज। हर हफ्ते अर्जुन किसी न किसी बहाने नंदपुर के पास आता और एक चिट्ठी छोड़ जाता। लीला भी जवाब रख जाती, कभी शायरियों में, कभी सवाल में, कभी एक छोटी सी कहानी, और धीरे धीरे उन लफ्ज़ों में मोहब्बत घुलने लगी थी। लेकिन वक्त उनके लिए एक और कहानी लेकर आता। एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत और कुर्बानी एक ही रास्ते पर चलने वाली थी और उन दोनों को अभी तक पता भी नहीं था कि एक दिन वो बरगद का पेड़ उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा गवाह बनने वाला है और उसके नीचे लिखी गई एक चिट्ठी कभी लौट कर नहीं आएगी। लफ्जों में पलती मोहब्बत नंदपुर के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अब सिर्फ हवा नहीं चलती थी, वहां लफ्ज रुकते थे, चिट्ठियां रुकती थी और 2 दिल अपनी बातें कागज पर उतारते थे। अर्जुन और लीला ने कभी ज्यादा मुलाकात नहीं की पर उनकी चिट्ठियां उनकी खामोशी से ज्यादा बोलती थी। हर हफ्ते अर्जुन किसी न किसी बहाने नंदपुर में आ रहा था,
कभी किसी मीटिंग के नाम पर, कभी किसी गांव में जागरूकता अभियान के लिए, और हर बार बरगद के पेड़ के नीचे एक चिट्ठी छोड़ जाता। लीला भी वहां आती और उसका जवाब रख जाती। उन्होंने एक दूसरे के बारे में सब कुछ लिखना शुरू कर दिया, अपने बचपन की बातें, अपने सपने, अपने डर। एक बार लीला ने लिखा, अर्जुन कभी कभी मुझे लगता है तुम पागल हो। जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उसमें जान भी जा सकती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कुछ दिन बाद जवाब आया, लीला डर तो लगता है पर गुलामी से ज़्यादा नहीं, और जब भी डर लगता है मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ लेता हूँ, फिर हिम्मत वापस आ जाती है। लीला ने वो चिट्ठी अपने तकिए के नीचे रख ली। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसके दिल में एक नया एहसास जन्म ले रहा था, एक एहसास जिसने शायद वो खुद एक एहसास जिसे शायद वो खुद भी नाम नहीं दे पा रही थी। समय बीतता गया, महीने बीत गए। अर्जुन और उसके साथी अब और भी ज़्यादा सक्रिय हो गए थे। ब्रिटिश पुलिस अब क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए हर जगह तलाशी ले रही थी। कई लोग गिरफ्तार हो गए थे, कई लोगों को जेल में डाल दिया गया था। एक रात अर्जुन ने अपनी चिट्ठी में लिखा, लीला अगर मेरी कभी चिट्ठी आनी बंद हो गई तो समझ जाना कि मैं किसी मुश्किल में हूँ, पर एक बात याद रखना, तुमसे मिलना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और खूबसूरत गलती थी, क्योंकि अब मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। लीला ने जब ये पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया वो सिर्फ अर्जुन का इंतज़ार नहीं करती, वो अर्जुन से मोहब्बत करती है। लेकिन उसने कभी ये बात लिखी नहीं, शायद डर था, शायद वक्त का इंतज़ार। एक शाम लीला तालाब के पास बैठी थी, हवा में ठंडी सी खुशबू थी, आसमान धीरे धीरे नीले से काला हो रहा था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया, अर्जुन मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, पर शायद मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही हूँ। अगर तुम अगले हफ्ते नंदपुर आ सको तो शाम को तालाब के पास मिलना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, लीला। उसने चिट्ठी फोल्ड की और बरगद के नीचे रख दी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे कोई फैसला हो गया।

वो मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। सूरज ढल गया, गांव शाम की ओर ढल रहा था। तालाब का पानी भी अब काला सा लगने लगा था, पर अर्जुन अर्जुन नहीं आया। लीला ने सोचा, शायद देर हो गई है, वो कल आएगा। अगले दिन लीला फिर बरगद के पेड़ के पास गई। कोई चिट्ठी नहीं थी, कोई संदेशा नहीं था, कोई शब्द नहीं थे, कोई लफ्ज नहीं थे, बस इंतजार। अगले दिन भी कुछ नहीं आया। एक दिन गुजरा, 2 दिन बीत गए, 3 दिन निकल गए, फिर पूरा 1 हफ्ता बीत गया। ना अर्जुन आया, ना उसकी कोई चिट्ठी। लीला का दिल बेचैन होने लगा। उसने हर दिन तालाब के पास जाकर इंतजार किया, हर दिन बरगद के पेड़ को देखा, पर वहां सिर्फ हवा होती थी और खामोशी। एक दिन वो हुआ जिसकी लीला ने कभी कल्पना नहीं की थी। गांव में खबर फैल गई, लोग छुपके छुपके बातें कर रहे थे। ब्रिटिश पुलिस ने पास के जंगल में कुछ क्रांतिकारियों को घेर लिया था। गोलियां चली थी, कई लोग मारे गए थे। उनमें से एक नाम था अर्जुन मिश्रा। लीला को जब ये खबर मिली, उसके हाथ से मटका गिर गया। उसे लगा ये झूठ है, ये गलत खबर है। अर्जुन के साथ ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। पर कुछ दिन बाद राघव बाबू गांव आए। उन्होंने सबको बताया कि अर्जुन कितना बहादुर था। उसने अंतिम पल तक हार नहीं मानी, उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। लीला चुप खड़ी थी वहां, उसने सब कुछ सुना। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। उस रात लीला अकेली बरगद के पेड़ के पास गई। हवा थोड़ी तेज चली, पत्ते हिलने लगे, जैसे पेड़ खुद कोई कहानी सुनाने वाला था। तभी उसकी नजर मिट्टी में दबे एक पुराने कागज पर पड़ी। उसने उसे निकाला, कागज पुराना था, पर लिखावट पहचान में आ रही थी। वो लिखावट अर्जुन की थी। लीला के हाथ कांप गए। उसने धीरे से चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था, लीला, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं वापस ना आ पाऊँ। ब्रिटिश पुलिस हमारे पीछे है और हो सकता है मैं बच ना पाऊँ, पर एक बात कहनी थी। आज़ादी मेरी जिम्मेदारी थी और तुम मेरी खुशी। मुझे अफसोस सिर्फ एक बात का रहेगा कि मैं तुमसे वो बात सामने खड़े होकर नहीं कह पाया जो मैं तुमसे इस चिट्ठी में कह रहा हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बेपनाह मोहब्बत करता हूं, हमेशा से। और इस बार नहीं, शायद मरने के बाद भी मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। लीला की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया। तालाब के पास हवा चल रही थी, बरगद के पत्ते सर सर कर रहे थे, और कहीं दूर जैसे वक्त खुद कह रहा हो, कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी अमर हो जाती है, क्योंकि कुछ मोहब्बत है।

और कुछ कुर्बानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, बस कहानी बन जाती है। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने सुनी आज की कहानी जो थी प्री इंडिपेंडेंस एरा की, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और मिलेंगे हम फिर से अगले हफ्ते एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

0: परसों बाद घूमने निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारे शौहर कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: शरणार्थी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

अपनी माँ की इकलौती बेटी और अपने स्टेप डैड की पांचवी सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की।

0: अनफॉर्चुनेटली किसी डिजाइनर ने
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक इरलो पान चबाए आ

मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पहन बनाओ रत बाला, खुली जाए बंद अकल का